0: may pichajal.
1: Hello, good morning, namaste, Saskatoon. CFCR 90.5 FM पर आपके लिए संगीत माला का प्रोग्राम लेकर हम आ गए हैं और आज का ये संगीत माला आप सुनेंगे मेरे यानी नीपा के साथ और मेरा साथ देंगे
0: मनीष जी हाँ वेलकम दोस्तों संगीत माला में एक बार फिर आप सबका स्वागत है जैसे कि हर शनिवार हम आपके सामने होते हैं अलग अलग गानों के और अलग अलग टॉपिक्स के साथ तो आज भी हम आपके साथ हैं और आपका मन बहलाएंगे पूरा डेढ़ घंटा यस फ्रॉम 11 to 12:30 और आप अपनी फरमाइशें भी हमें भेज सकते हैं 3062425002 पर अगर आपका मन है किसी को भी डेडिकेट करने का किसी को भी सॉन्ग अपना आप बचाना चाहते हैं अपनी फरमाइश अपनी अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस जरिए को यूज़ कीजिए जो कि हम आपके साथ अब डेढ़ घंटा हैं
1: जी हाँ और जैसे मनीष जी ने कहा कि आपको किसी को बर्थडे विशेष भेजनी हो और एनिवर्सरी की विशेष देनी हो या कोई भी अपना मैसेज अपनों तक पहुंचाना हो तो आप हमारे स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं और या तो आपके पास हमारा जो टेक्स्ट नंबर है उसके ऊपर आप टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं तो मनीष जी कहिए ये सावन का पावन महीना चल रहा है और बहुत सारी मंदिर में भी एक्टिविटीज हो रही है और कैसा लगता है आपको ये जो थोड़े बाकी बचे दिन हैं बच्चों के वैकेशन से पहले और स्कूल खुलने से पहले जो भी आप जितनी खुशी जितना घूमना है वो आप घूम सकते हैं तो आपका कोई प्लान है क्या
0: बिल्कुल प्लान तो एज सच अभी ऐसा कुछ फिलहाल नहीं है बिकॉज प्लान अब सिर्फ एक ही चल रहा है कॉन्सेंट्रेशन एक ही है कि बैक टू स्कूल यानी आप जैसे बच्चों को वापस से स्कूल में आते हैं और आपने देखा होगा हर जगह मैसेजेस भी आजकल स्टोर्स में यही चलते हैं बैक टू स्कूल यानी कि प्रिपरेशन कीजिए तो आजकल हम सब तैयारी में लगे हुए हैं कि कैसे अपने बच्चे को जब स्कूल जाना है तो उसे क्या चीज़ की ज़रूरत है और क्या नहीं चाहिए
1: दो महीनों से
0: जब बिगड़ गया ट्रैक पर लाने की कोशिश
1: वापस से बैक टू स्कूल नहीं बैक टू रूटीन लाइफ जो बच्चों की स्कूल के साथ करना है वो ही करना है चलिए वो तो ये जिंदगी का एक पहलू है वो हमें हमेशा से वो उसके तरीके से चलना ही होता है और शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम में जो हम आज के जो खास हमारे मैं सिर्फ आज के नहीं बोल सकती हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जो खास राइटर ऑथर स्क्रीन राइटर जो भी है जिनका नाम है रियल नाम बताऊं या कौन सा नाम बताऊं
0: जी जी रुकिए रुकिए पहले गाना चलाते हैं और फिर बात करते हैं
1: तो मुझे मनीष जी जरा लगता है कि देखिए इन्होंने इतने सारे गाने लिखे हुए हैं कि लोगों को इनका नाम जरूर पता होगा लेकिन ये नहीं पता होगा कि ये जो गाने आज हम चलाने वाले हैं
0: चलिए फिर भी हम इस गाने के बाद रिवील करते हैं क्यों नहीं
1: ठीक है तो सुना देते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में गाया हुआ फिल्म आई थी बंदिनी का बहुत ही सुरीला बेहद प्यारा गाना है और ये जो हमारे आज के जो राइटर है उनका ये पहला लिखा हुआ गाना
0: चलिए नेपा जी ने हिंट भी दे दिया है तो दोस्तों प्लीज कॉल कीजिए और हमें बताएं कि आज हम किन के बारे में बात करने वाले हैं

0: मनीष जी, बहुत अच्छा लगता है ना कि जैसे ही गाना प्ले किया और हमें तुरंत कॉल आ गया, हमारे कॉलर ने कहा गुलजार जी, और वो सुन के इतना अच्छा लगा कि लोग सचमुच में कितने प्यार से सुनते हैं और उनको अंदाजा लग ही जाता है।
1: और कुछ गाने और कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जिनके लिए कुछ कहते हैं ना, कुछ क्ल्यू ही काफी होता है, यानी एक
0: सिखा दे आपने।
1: हाँ बिल्कुल, और थैंक यू सो मच। हालांकि उन्होंने अपना नाम हमें नहीं बताया, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं उनका नाम लेकिन रिवील नहीं करूँगा। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया स्टूडियो पर।
0: आप हमें कॉल कीजिए, अगर उनको अपना नाम नहीं पता ना हो, हमें कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें पता है कि हमारा जो मैसेज है वो हमारे सुनने वालों तक पहुंच जाता है।
1: बिल्कुल, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा भी हम करते हैं कि आप हमें हमेशा हर शनिवार आप सुनते हैं और इस तरह से आपने हमें इनकरेज करते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, तो पता चल ही चुका है गुलजार जी का बारे में, तो बात करते हैं उनके बारे में और उनके गानों के बारे में, क्यों नहीं पाजी।
0: तो मनीष जी देखिए, उनका जो रियल नाम कहे तो उनका नाम था संपूर्ण सिंह कालराजी, जो उनका जन्म हुआ था दीना नाम का एक गांव है। वो अभी पार्टीशन के बाद में अभी वो पाकिस्तान में है, लेकिन बस यही है कि हमारे जो आज गुलजार जी के बारे में हम बात करने वाले हैं, उनकी बर्थडे अभी गई है 18 अगस्त को, और वो 92 ईयर्स के हुए हैं। तो कितने सालों से वो हमें हमारी फिल्म इंडस्ट्री में को कितने सारे उन्होंने गाने दिए हैं कि आपको जब सुनाएंगे, हम हमारे लिसनर्स को भी सुनाएंगे, तब उनको भी यकीन नहीं आएगा कि ये सारे गाने उन्होंने लिखे हुए हैं। तो एक मैं गाना आपको सुनाना चाहती हूँ मनीष जी, वो फिल्म आई थी ना खामोशी, उसका जो ये गाना है किशोर कुमार जी की आवाज में गाया हुआ, हम ये गाना उनको हमारे लिसनर्स को सुना देते हैं और बाकी ढेर सारी बातें बात करेंगे।
1: बिल्कुल, और क्या आपने कहा कि कौन से साल में आई थी ये मूवी?
0: ये आई थी खामोशी फिल्म,
1: आई थिंक 1969
0: 72 में।
1: ओह 72, ओके, चलिए सुनते हैं फिर ये गाना।

0: देखिए इतने सुरीले गाने उन्होंने हमें दिए हुए हैं, और बोलते हैं ना कि राइटर की जो कलम होती है उसमें बहुत ताकत होती है मनीष जी। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं और आप, मुझे लगता है थोड़ी शायरी भी उनकी बोलेंगे, उनकी थोड़ी नज़्में भी बोलेंगे, ताकि हमारे लिसनर्स को भी पता चले कि कितनी गहराई होती है उनकी लिखाई में। तो अभी जैसे हम लोगों ने कहा कि आज के इस प्रोग्राम में हम गुलजार के गाने चलाने वाले हैं, तो उन्होंने अपना तखल्लुस गुलजार दीन भी रखा हुआ था। क्योंकि देखिए पहले तो पता ही था, पहले के समय में शायरी को इतना कोई, हम लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया करते थे। अक्सर पेरेंट्स सोचा करते थे कि भाई तुम कुछ पढ़ाई कर लो, लिखाई कर लो, ताकि तुम्हारे फ्यूचर में आप कुछ अच्छा कमा सको। तो उनको उर्दू बिल्कुल भी नहीं आती थी। हालांकि उनका जो शुरू का वक्त था, शुरू का दौर था, वो जैसे वो पाकिस्तान में रहा करते थे, तो उनको उर्दू स्कूल में सिखाया जाता था, लेकिन उनकी उर्दू इतनी कुछ अच्छी नहीं थी और वो हमेशा उसमें फेल हुआ करते थे। लेकिन फिर उन्होंने जो उर्दू लैंग्वेज से उनको इतना लगाव था कि वो अपने पिताजी को भी, क्योंकि वो जो जिस माहौल में रहते थे ना, वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम लोग हुआ करते थे, तो वो अपने पिताजी को अब्बू कह के बुला करते थे ना, तो वो भी अपने पिताजी को ना तो बाबूजी या वो अब्बू करके या अब्बा जान करके बुलाया करते थे, क्योंकि उनको उर्दू से इतना लगाव था। और फिर उन्होंने मिर्ज़ा गालिब जी की जो किताब होती है, उनकी जो शायरी होती है, उनको पढ़ पढ़ के, और अल्लाह अल्लाह रखा जी, अल्लाह रखा जी करके कोई ऐसे ही अपने शायर थे, उनकी सारी किताबें इतनी पढ़ पढ़ के उन्होंने उर्दू में मास्टरी कर दी। अभी आप सोचिए, जिसमें वो फेल हुआ करते थे, और वही लैंग्वेज उनको इतनी पसंद आई कि वो हमेशा से कहते थे कि देखिए कि उर्दू वो ऐसी एक ज़बान है कि ज़ुबान फ़कीरी में भी आपको नवाबी का मज़ा देती है, ऐसी भारी बरकम जो ज़बान है वो उर्दू है, कि आप इतने सलीके से वो बोलते हो, इतना रिस्पेक्टफुल वो लैंग्वेज है। और देखिए ये
1: बिल्कुल गुलजार साहब के लिए अगर हम कहें तो एक इस तरीके का शख्स जिसको जो शायरी लिखते हैं, पोइट्री लिखते हैं, वो ही खानों जो गाने हैं हमारे, जो गाने को तराश सकते हैं, इतने बेहतरीन गाने उन्होंने हमें दिए हैं और बतौर लिखे हैं, तो वो उनके शब्दों से, उनके शायरी से ही पता चलता है कि कितना उनमें मतलब सोच है, इतनी अच्छी उन्होंने, इतनी तरीके की उन्होंने शायरी की हुई है।
0: और इसलिए देखिए उनके पिताजी से छुपा के उन्होंने अपना एक तखल्लुस सा नाम दे दिया था, और वो उन्होंने रखा था गुलजार दीनवी। तो गुलजार जी के बारे में हम लोग वैसी बातें करेंगे, और बाद में देखिए इतने वो फेमस हो गए कि वो उनकी जो संपूर्ण सिंह कालरा वो लंबा नाम था, तो गुलजार दीनवी में से दीनवी भी हट गया, और सिर्फ उनकी कलम का जो मेन नाम गुलजार जी है वो आज हम उनको उसी के नाम से पहचानते हैं। और देखिए हमें एक फरमाइश भी आ गई है सीधे इंग्लैंड लंदन से, नरेंद्र जी जो यूके में बैठे हैं, उन्होंने यहाँ पे मॉन्ट्रियल में स्मिथ करके उनके जो हैं स्मिथ जी के लिए एक बर्थडे रिक्वेस्ट की फरमाइश की है। तो नरेंद्र जी और उनकी वाइफ विश्वा, उनका बेटा एकाय, और उनके जो मॉन्ट्रियल में है उनके भाई जो हैं रोहन दानवी, वो अपने स्मिथ जी को और उनकी जो बेटी है धरा,

उस सब स्मित जी को बर्थडे विशेष भेजते हैं और उनके लिए उनका फेवरेट गाना बजाना चाहते हैं। फिल्म आई थी साथिया और उसी का जो गाना है टाइटल सॉन्ग वो गुलजार जी ने ही लिखा हुआ है। तो स्मित जी आपको ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड लंदन और मॉन्ट्रियल में ही आपके परिवारजनों ने विश किया है और हमारी तरफ से भी आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। और सुनते हैं ये गाना।

0: तो ये जो गाना हमने चलवाया वो स्मित जी के लिए था, और ध्वनि रोहन एकाय और मॉन्ट्रियल में उनका बर्थडे है, तो सेलिब्रेट कीजिए अच्छे से। और मनीष जी आप कह रहे थे और एक फरमाइश आई है।
1: बिल्कुल, फरमाइशें तो हमारे पास बिल्कुल हैं, और ये हमारी जो फरमाइश आई है, हमारी रेगुलर लिसनर हैं अपर्णा दीक्षित जी, उन्होंने इस गाने की फरमाइश की है, और गाना है रिम झिम गिरे सावन
0: फ्रॉम द मंजिल।
1: बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं गाना। थैंक यू सो मच अपर्णा जी।

0: क्या बात है, क्या बढ़िया गाना था रिमझिम गिरे सावन। थैंक यू वंस अगेन अपर्णा जी गाना की फरमाइश के लिए और हमारे रेगुलर लिसनर बने रहने के लिए। तो दोस्तों हो चला एक समय छोटा सा ब्रेक लेने का, लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे आप ही के प्रोग्राम संगीत माला में जो कि आप सुन रहे हैं 90.5 CFCR रेडियो स्टेशन पर।
1: Don't have socks, covers the feet on today or night commutes. We've got an incredible selection of Birkenstocks with more coming in all the time. With different styles, colors, patterns, and materials, there's something for everyone. Get ready for the beach, pool, or boat with Birkenstocks waterproof EVA sandals. Stop by the shop today to check out our stock.
2: Now all see ladies and see gentlemen, they all ask how and where. It's a Broadway shoe repair. It's a Broadway shoe repair.
3: Looking for the most sophisticated secret in town? The venue at McLean Block is waiting. Nestled in Saskatoon's historic downtown core, the venue's heritage space offers 3,000 square feet of timeless luxury for your event. Whether it's an intimate wedding or a cocktail soiree, mix old-school glamour and cutting-edge style in our sleek lounge and private mezzanine, and dance the night away on our legendary horsehair-sprung floors. The venue at McLean Block, 265 3rd Avenue South, where memories are made. Start your story today at mcleanblock.com.
4: Find your ideal property in Saskatoon with Shukla Realty. Shalini and Shekhar Shukla with RE/MAX Saskatoon provide seamless real estate solutions for effortless property sales. Whether you're looking for a single-family home or a luxury estate, a condo or a townhouse, a commercial space or an investment opportunity, our curated selection of properties will meet your needs. From teaching college students to becoming real estate experts, Shukla Realty is the name you can trust, guaranteed. Visit shuklarealty.com, that's S-H-U-K-L-A, or call 306-891-5580 for a free consultation today.
5: Do you own a business in Saskatoon? Do you enjoy this program on CFCR? Now we come to the big question. Do you think other people who enjoy this program might be interested in your business? If you provide a good or service that would appeal to Saskatoon's multicultural audience, you should be advertising in this very spot. Call 664-6678 Monday through Friday during business hours for more details on how you can advertise on Saskatoon's community radio station, CFCR 90.5 FM.
0: वेलकम बैक दोस्तों, संगीत माला में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपको उस मनीष और मेरा साथ दे रही है नेपा जी। आप सुन रहे हैं ये संगीत माला केवल 90.5 CFCR रेडियो स्टेशन पर और जिसके प्रायोजक हैं ICCA, यस इंडिया कनाडा कल्चरल एसोसिएशन। तो दोस्तों ये कार्यक्रम आज जो हम स्पेशल आपके सामने लाए हैं वो है गुलजार साहब के गानों के ऊपर, उनके जो उन्होंने गाने लिखे हैं और उन्होंने जो मूवीज़ बनाई हैं, डायरेक्ट की हैं, म्यूज़िक दिया है, बहुत तरीके का काम गुलजार साहब ने किया हुआ है। तो लेट्स लिसन दिस फर्स्ट सॉन्ग, मैंने तेरे लिए ही।

0: क्या प्यारा गाना था नेपा जी ये गाना। अगर मैं कहूँ
1: तो है ना कि देखिए किसी को पता नहीं होगा कि ये जो गाने हैं, वैसे कितनी सारी फिल्मों के मैं अगर आपको नाम बताऊंगी तो आपको लगेगा ये इतने अच्छे अच्छे गाने, क्योंकि जनरली फिल्मों पे हम कौन एक्ट करता है वो देखते हैं, या किसी की कौन प्लेबैक सिंगिंग कौन कर रहा है वो देखते हैं, लेकिन कौन राइटर है,
0: बिल्कुल
1: लिरिसिस्ट कौन है, उसके बारे में जनरली हम इतना नहीं ख्याल रखते।
0: देखिए कहते हैं ना कि, और खासतौर पर पुराने गानों की बात करें तो हर गाने के इतने मतलब होते थे, इतने मीनिंगफुल होते थे वो, और उन गाने को लिख पाना, उनको समझ के लोगों के सामने प्रेजेंट करना, मतलब कि हर मूवी के साथ कनेक्ट करना, और उस जब उसमें आपको जज्बात दिखाई देते हैं, उसमें आपको एक कहानी दिखाई देती है उस गाने में। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने तो काफ़ी स्टडी और आप तो नॉलेजेबल हैं, तो गुलजार साहब के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि वो कैसे आए, कैसे मतलब कैसे पाकिस्तान से, क्या सोच के, मतलब क्या सोचा था उन्होंने
1: कि
0: मतलब
1: मनीष जी से आपको पता है कि 1947 में पार्टीशन के बाद में इंडिया में काफ़ी मतलब पाकिस्तान से काफ़ी हमारे इस इंडिया में आ गए थे, तो उनके पिताजी जो थे ना वो लोग, उन लोग भी वहाँ से आकर यहाँ पे दिल्ली में आ गए थे, लेकिन उनके फैमिली की हालात कुछ इतने अच्छे नहीं थे तो वो पढ़ाई तो नहीं कर सके, लेकिन थोड़े टाइम दिल्ली में रहने के बाद उन्होंने सोचा कि मुंबई आ जाते हैं। तो फिर उनके पिताजी को, देखिए उनको पढ़ने का कहा था, लेकिन उनको पता था कि वो जिम्मेदारी मतलब बच्चों इतने सारे भाई बहनों में उनका अच्छे से वो स्टडी नहीं करवा पाएंगे, तो कोई ना कोई तो चाहिए जरिया कि जो इनकम हो तो उनमें से घर का पूरा गुजारा हो पाए, तो वो बॉम्बे आ गए थे। लेकिन उनके पिताजी ने तब भी उनको कहा था कि देखो अगर तुम शायरी के चक्कर में रहोगे तो तुम्हें गुरुद्वारे में वो लंगर में ही काम करना पड़ेगा, कि तुम इसमें तैरोगे नहीं। लेकिन अब गुलजार जी कहते हैं कि बॉम्बे आने के बाद उन्होंने वर्ली में एक गराज में वो काम किया करते थे, जो गाड़ी के पेंट करते हैं, डेंट होते हैं, वो सब वो काम किया करते थे। और वो क्यों किया करते थे, ताकि वो उनको दिमाग ज़्यादा चलाना ना पड़े, और जो उनका जो फारिग टाइम था उसमें वो बैठ के किताबें पढ़ना, और जो भी शायरी जो उनके दिमाग में होती थी उनको कागज़ पे उतारते थे। और फिर उन्होंने ना, देखिए सब टैलेंट तो होती ही है, और तब उन्होंने जाके PWA मतलब कहते हैं कि प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन में उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। वहाँ पे सब जो उभरते कलाकार होते हैं वो अपनी टैलेंट्स और वहाँ पे करते हैं, तो वहाँ पे शैलेंद्र जी जो थे, जो लिरिसिस्ट थे, उनका उनसे मिलना हुआ, और उनको लगा कि गुलजार जी में काफ़ी दम है। तो वो फिल्म बन रही थी बंदिनी, तो उसमें SD बर्मन जी का म्यूज़िक था, और शैलेंद्र जी और SD बर्मन के बीच में कोई अनबनी हो गई, तो शैलेंद्र जी ने मुकर दिया कि मैं इस फिल्म के गाने नहीं लिखूंगा। तो उन्होंने गुलजार जी को पुश किया कि तुम जाओ, तुम एक बार मिलो बिमल रॉय से, और तुम इसके गाने आपको लिखना ही लिखना है करके। और फिर वो मैंने जैसे हम लोगों ने बंदिनी का जो गाना उनको
0: सुनाया था, बिल्कुल बिल्कुल,
1: और देखिए कलम में इतनी ताकत होती है। लेकिन गुलजार जी बिल्कुल चाहते नहीं थे कि वो फिल्मों के गाने लिखे, तो वो वापस से गैराज में आ गए।
0: आज मैं भी कुछ देख रहा हूँ, मैं स्पेशल आज आप जो हैं उर्दू के जो शब्द यूज कर रहे हो गुलजार साहब के से प्रेरित होके, और
1: देखिए वही मुझे खुद को अभी अजीब लग रहा है कि देखिए सुन सुन कर हमारे भी जो असर होती है ना वो लहजे में आ ही जाती है। तो गुलजार जी वापस गैराज में चले गए थे, लेकिन बिमल रॉय को पता था कि गुलजार जी बहुत ही कमाल के राइटर है, तो वो जाकर उनको कन्विंस कर वापस से लेकर आए कि कहा नहीं तुम गैराज के लिए नहीं बने हो, तुम्हें लिखना ही है गाना और तुम्हें मेरे साथ काम करना है। और गुलजार जी की आंख में आंसू आ गए थे और वो वापस चले गए थे। और देखिए यहाँ पर मैं आपको ये जो अभी मैं गाना आपको सुनाने वाली हूँ, फिल्म आई थी आंधी, और उनके उस फिल्म के सारे गाने गुलजार जी ने लिखे हैं, और ये ही गाना सुनना चाहती हैं इंडिया से गीता जी, और गाने के बोल हैं तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं, और मुझे लगता है ये मेरा भी पसंदीदा गाना है और आपका
0: बिल्कुल, और मेरे ख्याल से लाखों करोड़ों लोगों का ये गाना पसंदीदा होगा, तो चलिए सुनते हैं गाना।

0: देखे क्या क्या अल्फाज से, क्या लफ्ज से, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। और इतने डीप होते हैं ना कि काफी मतलब आप देखा जाए तो तेरे बगैर जिंदगी में कोई शिकवा ही नहीं। मतलब जो
1: इस पे मुझे एक, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक बड़ी अच्छी शायरी याद आ रही है गुलजार साहब की।
0: हाँ जी।
1: कैसा अजीब खेल है मोहब्बत का जनाब, कैसा अजीब खेल है मोहब्बत का जनाब, एक थकता है, थक जाए तो दोनों हार जाते हैं।
0: ओह सही बात है, सही बात है। वही तो है कि एक दूसरे के साथ होना तो दोनों का योगदान रिश्ते में भी बहुत जरूरी होता है। अभी आपने शायरी की बात की है तो अभी आपको मेरी तरफ से भी सुननी पड़ेगी, लेकिन अभी नहीं
1: सुननी पड़ेगी क्या, मतलब हम तो सुनना चाहते हैं आपको।
0: लेकिन देखिए मनीष जी, मुझे यहाँ पर एक बात याद है, अभी हमें एक हमारे कॉलर्स का फोन आया था, जयश्री जी का। उन्होंने कहा कि वो RBC बैंक में गई हुई थी और वहां पे भी हमारा ये संगीतमाला चल रहा था, तो वो कितने खुश होकर मुझे बता रही थी कि आप लोगों का शो सब लोग सुन रहे हैं, कि शी वाज सरप्राइज के बैंक के अंदर भी जब वो गई तो उनको लगा कि शायद ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन फिर वो जब गाड़ी में आए तो उन्होंने वही प्रोग्राम सुना तो उनको भी यकीन हो गया और वो खुशी के मारे हमें बोल रही थी कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच हमारे सभी लिसनर्स का जो हमारा ये संगीतमाला सुन रहे हैं।
1: मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा, हालांकि ये बहुत अच्छा, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है संगीतमाला को प्लेटफॉर्म मिला। अब तक तो हम स्टूडियो के अंदर अपना रेडियो शो करते आए हैं हर सैटरडे लाइव, तो लास्ट वीक जो फोक फेस्ट था फ्राइडे और सैटरडे को, और ICCA ने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम लाइव शो करें, और हमने उसे लाइव प्रेजेंट किया बहुत लाइव पब्लिक के सामने, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और थैंक यू सो मच ICCA, उसके लिए मैं उनका थैंक्स करना चाहता हूँ। और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला लोगों से।
0: हाँ।
1: उनको, कई लोगों को तो पता चला कि हम लोग ऐसा शो करते हैं, मतलब तो इतनी अच्छी चीज़ है कि लोगों तक ये चीज़ पहुँचती है। और वो कहते हैं भाई हमें तो मालूम नहीं था कि हिंदी सॉन्ग्स भी हमें सुनने को मिल सकते हैं Saskatoon में, तो हमने मैंने उनको शेयर की इन्फॉर्मेशन, तो कई लोगों ने इंक्वायरी करी, तो आई थिंक इट्स वन ऑफ दी वे आपने भी जो बताया RBC में, तो कई लोग इस तरह से अभी आएंगे शायद आपके पास। और
0: जी हाँ, और देखिए वही था कि जो फोक फेस्ट का वही एम था कि सब हमारे भारतीय, सब इंडियंस वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, वैसे वो बोलते ना सब इंडिया में ही हो वैसा ही वाइब्स आ जाता है। और हमें देखिए 15 अगस्त भी गई हुई है, तो हम लोगों को उस टाइम इकट्ठा होकर हम लोगों ने जो केक काटी और जो अच्छे अच्छे हम लोग, आपने जैसे कहा आपने लाइव संगीतमाला भी किया, कितना अच्छा लगा था वहाँ हमारे लोगों से जुड़कर बात करने में। और देखिए अभी हमें फरमाइश भी आ गई है, फिल्म किरण जी सुनना चाहती हैं, क्योंकि 15 अगस्त के दिन हम लोग लाइव तो नहीं कर पाए थे, लेकिन या ये जो हमारे देशभक्ति के गीत है हम कभी भी हमारे लिसनर्स को सुना सकते हैं और हमारे देश से जुड़ सकते हैं, तो किरण जी की फरमाइश पर सुनते हैं
1: मेरे
0: देश की धरती उपकार फिल्म का ये गाना।

0: मेरे देश की धरती सोना उबले उबले हीरे मोती, क्या गाना है। और हम लोगों को भी इंडिया की जो तरोताज़ा यादें हो जाती हैं। और आगे चढ़ते हैं, अभी देखिए इन्होंने गाने तो अच्छे लिखे हैं, लेकिन उन्होंने जो भी गाने लिखे हुए हैं तो ज़्यादातर आर डी बर्मन जी के साथ में उन्होंने काफ़ी सारे गाने हमें दिए हुए हैं, और किशोर जी ने भी गाया हुआ है। तो आर डी बर्मन जी और गुलजार जी का कुछ एक मुझे वाकया यहाँ पर आपको बताना है कि आर डी बर्मन जी, आपको तो पता है कि दोनों इतने बातूने थे कि गाना तो बनाना मतलब जो दो बातूने कहीं पे भी मिल जाते तो गाना बना लेते हैं, बातें कर लेते हैं। उसी तरह से एक बार आर डी बर्मन जी गाड़ी में जा रहे थे, सिग्नल लाइट्स पे खड़े थे, तो उनकी बाजू में एक दूसरी कार थी और गुलजार जी फुटपाथ पे खड़े हुए थे। तो आर डी जी ने देख लिया कि गुलजार जी वहाँ पे खड़े, तो उन्होंने बाजू वाली गाड़ी को कहा कि अपनी गाड़ी के विंडोज नीचे करो, और उन्होंने गुलजार जी को आवाज़ लगाई कि गुलजार जल्दी आ जा। तो गुलजार जी दौड़ के उनकी गाड़ी में बैठ गए, और फिर उन्होंने कहा कि मुझे ना एक धुन याद आई है, तुम फटाफट इसके ऊपर गाना बना लो। और स्टीयरिंग व्हील पे उन्होंने पूरी वो ट्यून उनको सुनाई गुलजार जी को, और गुलजार जी ने और उन्होंने वहाँ पर बैठ के गाना कौन सा बनाया पता है? फिल्म आई थी परिचय का गाना, मुसाफिर हूँ यार। और यही गाना राले से सुनना चाहते हैं रमेश जी। तो रमेश जी की फरमाइश पर ये गाना ऐसे कहते हैं ना कि मनीष जी बैठे बैठे ही ट्रैफिक सिग्नल लाइट पे खड़े होकर उन्होंने ये जो गाना बनाया है, और आज भी हम वो गाने को,
1: और आई बिलीव ये कई लोग जो सास्केटून आए होंगे मूव करके इंडिया से, जब शुरू में हम यहाँ कदम रखते हैं
0: जी,
1: तो ये सेम सिचुएशन होती है, तो शायद वो कोरिलेट कर सकते हैं
0: जी। हाँ।
1: तो चलिए सुनते हैं गाना
0: परिचय फिल्म का।

0: गुलजार जी के इतने सारे गाने हैं, तो उन्होंने आरडी बर्मन जैसे अपनी लाइफ की फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने एसडी बर्मन जी के साथ में की थी, फिर आरडी जी के साथ उन्होंने काम किया और उन्होंने एआर रहमान से भी काफ़ी उनके साथ भी काम किया था। उनकी फिल्म आई थी सदमा, उसका एक गाना मैं यहाँ पे सुनाना चाहती हूँ। यशुदास जी की आवाज़ में ही गाया हुआ गाना था, फिल्म का नाम है सदमा और गाने के बोल है ए जिंदगी गले लगा ले। क्या वर्ड्स है मनीष जी, आप सुनिए और आप भी एंजॉय कीजिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये गाना तो है ही ऐसा।

0: मनीष जी देखिए, जिंदगी का हम लोगों ने गाना सुनाया तो मुझे यहाँ पर एक शायरी याद आती है, जिंदगी आसान नहीं होती, जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है कुछ अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से।
1: क्या बात है, क्या बात है। आपने अगर कितने बढ़िया बोले हैं तो मुझे भी कुछ याद आ रहा है नेपा जी, मैं भी दोष लाइन
0: इरशाद, ये गुलजार जी की ही है जो मैंने कही,
1: और मैं भी जिंदगी पे ही बोलूंगा बिकॉज जिंदगी की बात कर रहे हैं तो।
0: हाँ जी,
1: जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे भी बन जाते हैं, जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे भी बन जाते हैं जिन्हें हम समझते तो हैं पर समझाना नहीं चाहते।
0: क्या बात है मनीष जी, आपने भी अंदर का वो जो शायर है वो बाहर आ रहा है, हालांकि हम लोग दोनों ने गुलजार जी की ही शायरी पढ़ी है।
1: जी हाँ बिल्कुल, गुलजार साहब की बात कर रहे हैं तो गुलजार साहब की शायरी बनती है।
0: और जैसे हमने कहा कि गुलजार जी ने एआर रहमान जी के साथ में भी काम किया है, तो हमें ऐसी ही एक एआर रहमान के साथ में गुलजार जी का जो एक गाना है, फिल्म आई थी दिल से, और गाने के बोले चल छैया छैया छैया, और वो गाना सुनना चाहते हैं।
1: जी बिल्कुल, हाशमी जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं और उन्हीं की फरमाइश पी भी है उनकी ये गाने की, तो जरूर सुनाते हैं ये गाना चल छैया छैया
0: फ्रॉम दिल से।

0: Summer can be full on. Pool days, fishing trips, barbecues, and every adventure in between. That's exactly why coming home just hits different. The fun's still on with Sastel Infinite 300 and Whole Home Wi-Fi. Sign up today and get corner-to-corner coverage for as low as $70 a month. Visit sastel.com/summer to get started. Conditions apply.
1: I feel like pizza.
2: I feel like beer.
3: This does not have to be a paradox.
4: Who are you?
3: I am Nicolas Flamel, the philosopher and alchemist. I tried to turn base metals into the gold, eh? And you should head to Paradox Pizzeria and Brewery. They have Detroit-style cheesy crust pizza and one-of-a-kind ales.
5: Paradox Pizzeria and Brewery has all the in-house food, local brewed craft beer, and homey vibes you're looking for. And our slice was runner-up for the best gourmet pizza in Planet S. Paradox Pizzeria and Brewery at 806 Broadway Avenue. We're alchemically good.
3: The gold, eh?
6: Find your ideal property in Saskatoon with Shukla Realty. Shalini and Shekhar Shukla with RE/MAX Saskatoon provide seamless real estate solutions for effortless property sales. Whether you're looking for a single-family home or a luxury estate, a condo or a townhouse, a commercial space or an investment opportunity, our curated selection of properties will meet your needs. From teaching college students to becoming real estate experts, Shukla Realty is the name you can trust, guaranteed. Visit shuklarealty.com, that's S-H-U-K-L-A, or call 306-891-5580 for a free consultation today.
7: वेलकम बैक टू संगीत माला, जो आप सुन रहे हैं CFCR 90.5 FM पर मेरे यानी नीपा के साथ, और मेरा साथ दे रहे हैं
8: मनीष।
7: तो आज के इस संगीत माला में हम बात कर रहे हैं हमारे राइटर और जिन्होंने काफ़ी फिल्में डायरेक्ट भी की है, प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं, हमारे गुलजार जी। और गुलजार जी के इतने सारे गाने हैं। तो फिल्म आई थी इजाज़त, और उस फिल्म के सारे गाने आप देखोगे ना तो इतना डीप वो गाने के वर्ड्स होते हैं। उसमें से एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, शायद हमारे काफ़ी लिसनर्स भी ये गाना सुनना चाहते होंगे। गाने के बोल हैं, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। आशा भोसले जी की आवाज़ में गाया हुआ, गुलजार जी की ही बोल में

0: क्या बात है, मेरा कुछ सामान लौटा दो। मुझे याद आ रहा है नेपा जी के एक गाना और मासूम मूवी का गाना था, लकड़ी की काटी हाँ काटी पे घोड़ा, वो भी गुलजार साहब ने लिखा था।
1: हाँ, वही, वो गाना
0: और उसके बाद पीछे कुछ हाँ, स्टोरी।
1: हाँ देखिए, आपने सही कहा, ये जो फिल्म थी वो शेखर कपूर जी ने बनाई हुई थी और उसमें उर्मिला मातोंडकर, फिर जुगल हंसराज, शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह जी थे। तो शेखर कपूर जी ने कहा कि उनको एक बच्चों का कोई गाना चाहिए, तो गुलजार जी ने ये गाना बना के उनको दे दिया। और फिर शेखर जी बोलते नहीं, ये गाना मुझे इतना, मेरे दिमाग में जो मैंने सोचा है वैसा ये गाना नहीं है, तो मुझे ये गाना नहीं चाहिए। तो गुलजार जी ने कहा ठीक है। लेकिन ये बात कि जब शबाना आजमी जी को पता चला कि गुलजार जी ने लिखा हुआ ये इतना बढ़िया गाना है जो शेखर कपूर जी ने मना कर दिया, तो वो स्पेशली शेखर कपूर को मिलने गई और उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है कि बच्चों की गाने लिखने में ये गुलजार जी इतने माहिर है कि तुम ये गाना आप ले ही लो। और जब हीरोइन का अगर प्रेशर आता है तो शेखर कपूर जी ने मना नहीं कर पाए और उन्होंने ये गुलजार जी का लिखा हुआ गाना ले लिया। और देखिए आज तक हम लोग वो गाने को,
0: ये गाना बिल्कुल, और गाना और हर बच्चे की जुबान पे ये आता है।
1: आपको पता भी होगा कि दूरदर्शन पे एक आता था मुगली, जंगल जंगल पता चला है,
0: बात चली।
1: वो जो मुगली का जो टाइटल गाना था वो भी
0: गुलजार साहब ने, क्या बात।
1: तो क्योंकि जब बॉस की उनकी बेटी का जन्म हुआ तो वो इतने चाहते थे कि राखी जी जो उनकी वाइफ रह चुकी, वो भी उस ज़माने की काफ़ी बड़ी हीरोइन हुआ करती थी, तो उन लोग दोनों की शादी हो गई, बॉस की का जन्म हुआ और गुलजार जी चाहते थे कि राखी जी अपना करियर छोड़ के पहले बच्चे के ऊपर फोकस करें। लेकिन दोनों की वो सोचने का तरीका जो था अलग था, तो उनका साथ तो साथ में नहीं रहा। लेकिन गुलजार जी अपनी बेटी को बेहद चाहते थे और इसलिए उनकी बच्चों की स्टोरी लिखने में एक उनकी एक मास्टरी थी। और यही एक नजारा, एक उनका झलका बोलन झलक है।
0: चलिए सुनते हैं ये लकड़ी की काटी, काटी पे घोड़ा।
1: यस।

0: देखा आज भी हम लोग भी कितने ध्यान से ये गाना सुन रहे हैं, क्योंकि हम लोग उन्हें भी ये बचपन में बहुत गाना गाया हुआ है। और मनीष जी, जो जैसे हम लोगों ने बात की कि उनकी बेटी बॉस की जिनका नाम है मेघना गुलजार, तो उनकी भी फिल्म, उन्होंने भी काफ़ी फिल्मों के फिल्में बनाई हैं, उसमें फिल्म आई थी राजी, उसी का एक गाना हम सुना देते हैं। और एज यूजल इस गाने के बोल लिखे हैं हमारे गुलजार।
1: क्या बात है।

0: सब बेटियां अपने बाबा की मल्लिका ही होती है। और देखिए इतने सारे गाने दिए हुए हैं, और यहाँ पर मुझे और एक गाना याद आता है, फिल्म आई थी जब तक है जान, उसका श्रेया घोषाल की आवाज में गाया हुआ और मोहित चौहान की आवाज में जो गाया हुआ गाना है,
1: आई थिंक ए आर रहमान जी का म्यूजिक भी था। तो आप सोचिए कितने फनकार इस गाने के अंदर हैं, गुलजार साहब का बोल और गाने की म्यूजिक ए आर रहमान।

0: मनीष जी, आपको पता है कि कोई भी इंसान होता है ना, उसमें एक एक खूबी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमारे गुलजार जी थे, उनका नाम संपूर्ण सिंह इसलिए रखा होगा, शायद उनके पिता को पता होगा
1: ये सारी खूबियां उनमें मौजूद
0: हैं। हाँ, वही ना, क्योंकि वो ऑथर भी रह चुके हैं, वो पोएट भी लिखते हैं, लिरिसिस्ट थे, स्क्रीन राइटर थे, फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्म डायरेक्टर भी रह चुके हैं, तो सारी जो बारीकी होती है वो इतनी धस धस के उनके ऊपर, उनके अंदर भरी पड़ी हुई है, इसलिए शायद उनके पिताजी ने उनका नाम संपूर्ण रखा था कि उनमें सारे गुण हैं जो एक फिल्म के लिए होना चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए होने चाहिए। और अगला गाना, फिल्म आई थी माचिस, और वो माचिस का
1: क्या
0: जो
1: बात, क्या मूवी,

0: चप्पा चप्पा चरखा चले। मनीष जी, इस फिल्म का डायरेक्शन भी गुलजार जी ने ही किया है
1: जी जी।
0: तो जिमी शेरगिल जी जब नए नए आए थे तो जिमी शेरगिल और चंद्रचूड़ सिंह तो उन लोग एक बार टेंशन में बैठे थे कि भाई गुलजार जी के साथ उनको फिल्म करने का मौका मिला है तो कैसे करेंगे। तो उन्होंने गुलजार जी से कहा कि भाई हम थोड़ा रिहर्सल कर लेते हैं। तो गुलजार जी ने कहा कि नहीं नहीं आराम से हो जाएगा, तुम लोग यंग लड़कों बच्चे हो, तुम लोग पार्टी करो एंजॉय करो। तो फिर शूटिंग के वक्त है ना, इसमें एक कुत्ते का सीन था तो गुलजार जी ने उस कुत्ते के पास भी इतना अच्छा काम करवाया। तब जिमी शेरगिल और चंद्रचूड़ सिंह ने कहा कि नहीं अगर ये इतना अच्छा कुत्ते से काम करवा लेते हैं तो हमसे तो वो काम करवा ही लेंगे। और रिजल्ट हम सबने देखा कि ये कितनी फेमस फिल्म हुई और सबने बहुत पसंद की थी इस फिल्म को। तो उन्होंने काफ़ी सारी फिल्में बनाई थी जैसे इजाज़त, माचिस, हुतुतु, अंगूर, मौसम, आंधी, कोशिश, परिचय, खुशबू। तो एक से बात एक जो मैं आपको बोल रही हूँ, उनकी जो फिल्में होती थी, उनके जो गाने होते थे, वो लगता है कि जैसे हमारी ही कोई कहानी उनके उनके शब्दों में हुआ करती थी। तो ऐसा ही एक बहुत ही प्यारा फिल्म आई थी घर, और उसके सारे गाने सुपर हिट है। और कौशिक जी सुनना चाहते हैं घर फिल्म का आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते, लता जी की आवाज़ में गाया हुआ ये सुरीला गाना गुलजार जी की ही राइटिंग है।

0: क्या गाना है मनीष जी. चलिए ऐसे ही हमारे लिसनर्स हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और इतनी अच्छी अच्छी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं.
1: बिल्कुल. और अगला गाना जो है वो स्लम चौक बिलियनर जो आई थी
0: जी
1: हाँ, तो मूवी तो सुपर डुपर हिट रही थी और उसने कई अवार्ड्स जो इंडिया के तो हैं ही हैं, साथ में ऑस्कर अवार्ड्स भी जीते. और उसका जो गाना था जय हो, जो यार रहमान ने शायद उसको सिंग गाया था और म्यूजिक भी था, लेकिन जो बोल थे वो गुलजार साहब के थे. तो ये गाना जय हो जो है, इसको भी ऑस्कर नॉमिनेट किया गया था गाने को. तो चलिए सुनते हैं.

0: जय हो जय हो जय हो मनीष जी, बहुत प्यारा गाना था। और गुलजार जी के तो कितने सारे गाने हैं, हम एक के बाद एक चला भी रहे हैं और देखिए टाइम क्या हुआ।
1: बिल्कुल, और जैसे कहते हैं ना, ये गाना जो अगला हम पेश करने वाले हैं, जिसको लास्ट गाना कहेंगे, वो भी इसी से संबंधित है। जैसे हम विदा लेते हैं
0: जी।
1: तो आज के भी कार्यक्रम की विदा लेते हैं और साथ में आप कुछ शायरी के साथ विदा ली जाए तो कैसी बात, कैसा रहेगा?
0: ऑफ कोर्स, जरूर मनीष जी, नेकी और पूछ पूछ। अभी देखिए, समझदारी की बात होती है। कहा है कि एक उम्र वो भी थी कि जादू में यकीन था, एक उम्र वो भी थी कि जादू में भी यकीन था। अब उस उम्र पर हम आ चुके हैं कि हकीकत पर भी शक होता है।
1: क्या बात है, क्या बात है। चलिए हम भी एक ऐसा शेर पेश कर देते हैं, गुलजार साहब का लिखा हुआ। बुझ जाएंगी सारी आवाजें, यादें यादें रह जाएंगी, तस्वीरें बचेंगी आंखों में और बातें सब बह जाएंगी।
0: हाँ, क्या बात है।
1: तो लेते हैं आज के लिए अलविदा।
0: आज से जैसे वक्त भी फिसलता जा रहा है और वैसे ही यादें भी हमेशा रहती है, और पता नहीं जब हम जिंदगी के उस पड़ाव पर होंगे तब तक वो यादें जो होती है वो हमारे साथ रहती है। तो चलिए हम अभी आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं, और जैसे गुलजार जी ने ही कहा हुआ है कि आने वाला पल जाने वाला है, तो बस आप इंतज़ार कीजिएगा। अगले हफ्ते हम वापस से आएंगे। ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, उसका हमें तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करना है। एटीट्यूड रखना जरूरी है लाइफ में, लेकिन ग्रेटिट्यूड का। टेक केयर, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।
1: सी यू ऑन नेक्स्ट सैटरडे। टाटा फ्रॉम मनी।

अस्सलाम वालेकुम सास कार्टून, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट उमर, और हमारा आज का प्रोग्राम जो है शॉर्ट प्रोग्राम है, लेकिन मैं इसको इसलिए शॉर्ट बनाना चाहता था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी हैं। कुछ दिनों में बहुत एहसास हुआ कि वक्त आ गया है कि बच्चे जो हैं वो स्कूलों को वापस जाने वाले हैं और यूनिवर्सिटीज़ में जाने वाले हैं, और कुछ ऐसे नन्हे बच्चे हैं जिन्होंने अपना किंडरगार्टन या अपना प्ले ग्रुप जो है वो स्टार्ट करना है, उस पर कुछ बात करेंगे। हमारा मकसद प्रोग्राम का हमेशा एंटरटेनमेंट भी रहा है, लेकिन कोई ना कोई मैसेज ज़रूर हम देते हैं, और मेरी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के हवाले से, इस प्रोग्राम की वसादत से जो है वो हम इस बात को और इस गुफ्तगु को आगे लेके जाएं कि हम अपने आने वाले दिनों को कैसे संभालेंगे, कैसे उनको बनाएंगे, क्या सोचेंगे उसके बारे में, और उनको किस तरह हम डिसाइड करेंगे या अपने बारे में उनको किस तरह उनका इम्तिजाज करेंगे कि हम अपने प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर कर पाएँ। प्रोग्राम का सिलसिला जो है वो अभी बिल्कुल जारी रहेगा। अभी हम आबदा प्रवीण की आवाज़ में सुन रहे थे कि मौला मेरे बात और बिगड़ी बना दे, अब वो इसी बात से मुंतसिब है कि हमें अपना सिलसिला कैसे और कहाँ से जारी रखना है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हमारी रूह की जान जो है वो इस कायनात में रखी हुई है, इस कायनात को कैसे हमने, इस कायनात में हमने रहने के लिए, इसको चलने के लिए हमें कैसे अपना जो है सिलसिला जारी रखना है। हमारे, मैं अपने प्रोग्राम के सिलसिले में सबसे पहले जो है वो उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारे फोक फेस्ट में तशरीफ़ लाए और फोक फेस्ट को जो है उन्होंने चार चांद लगाए। गो जो वहाँ पे परफॉर्मर या जो हमारा इम्तिहान हर चीज़ में, हर जगह में सिर्फ यही होता है कि हमें अपना इम्तिहान यहाँ पर देना है कि हम अपनी खुशियाँ और अपनी खुशियाँ कैसे बांटते हैं। 14 अगस्त गुजरी, 14 अगस्त को बहुत खूबसूरती से मनाया गया, केक कटिंग सेरेमनी की गई। मेरे साल इस साल की जो सबसे बड़ी खूबसूरत बात थी वो ये थी कि तमाम कल्चर के लोग जो है वो हमारे साथ शामिल थे, वहाँ पे तमाम पवेलियन मैनेजर शामिल थे, और हमने उससे केक कटिंग की सेरेमनी का आगाज़ किया। इसको बेहतर से बेहतर करेंगे, क्योंकि जो है सिलसिला इस तरह रहा कि अब जो है म्यूनसिपल गवर्नमेंट ने जो है वो सिविक स्क्वायर पे फ्लैग रेजिंग सेरेमनी को जो है वो ख़त्म कर दिया है, लेकिन हमने उस सिलसिले में उनसे बात भी की है और हमने उसका कोई हल जो है वो ढूंढने की भी कोशिश की है कि हम उसको कैसे उससे बेहतर कर सकेंगे या इस सिलसिले को हम कैसे अपना मिजाज बना सकेंगे। वक्त होने वाला है एक बहुत ही वो जो है हमारे हमेशा प्रोग्राम का एक सिलसिला और रابطہ तोड़ता है, लेकिन वो हमें जोड़ता भी है, और वो हैं हमारे आने वाले एड्स। एड्स का वक्त होने वाला है, 12:58 हो गए हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो में 3062425002 पे, और हमें अपने जो है अपनी रिक्वेस्ट बता सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं। बात करेंगे आज जो है वो बैक टू स्कूल, और जो बच्चे वापस अपने स्कूलों को जा रहे हैं, कॉलेजेस के जा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए जा रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा इम्तिजाज होता है कि जब आप स्कूल से निकल के यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं तो आपका सिलसिला कैसा होता है। मैं उन लोगों के लिए भी दुआगो हूँ जो इस सिलसिले में जो है वो आपके लिए दुआएँ करते हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं। अगर कोई बुज़ुर्ग किसी के घर में जो हैं वो बीमार हैं, अल्लाह ताला उन सबको शफा दे, और हमें अपनी दवाओं में वो बुज़ुर्ग ज़रूर याद रखें। आप लोग जब हमें कॉल करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम, और हमें महसूस होता है कि ये सिलसिला जो है वो इसी तरह ही जारी रहेगा। मैं आपके साथ फेसबुक लाइव पे भी अभी मौजूद होऊंगा कुछ देर के लिए, और हम उसको फेसबुक लाइव को और उस पर बातचीत करेंगे अपने सिलसिले को, और मैं चाहूँगा कि वहाँ पर आप हमें, अगर हमें कॉमेंट्स करें तो हमें बहुत ज़बरदस्त लगेगा। अभी वक्त हो गया है एक एड्स का, हम एड्स के बाद जो है आपके साथ वापस अपना रابطہ जो है वो बहाल कर

0: summer can be full on. Pool days, fishing trips, barbecues, and every adventure in between. That's exactly why coming home just hits different. The fun's still on with Sastel Infinet 300 and Whole Home Wi-Fi. Sign up today and get corner-to-corner coverage for as low as $70 a month. Visit sastel.com/summer to get started. Conditions apply.
1: WeGo returns to Raimi Modern on August 30th. WeGo is a free, family-friendly festival of art, music, dance, and more. Don't miss this year's performances by Pontix and Dump Babes. Plus, hands-on programs both inside and outside the museum from our many wonderful partners. Or check out a low-sensory WeGo experience on August 31st. WeGo at Raimi Modern on Sunday, August 30th, rain or shine. Find out more and register for the August 31st low-sensory festival at raimimodern.org. Steep Hill Food Co-op is your grocery store on Broadway. Escape the hustle and bustle of the supermarket in a friendly little store where everything is good for you and the earth. We carry fresh, mouth-watering produce from local farms. Stop by for crisp asparagus, tasty cucumbers, juicy tomatoes, sweet and snappy carrots, crunchy bell peppers, tender leafy lettuce, refreshing herbs, hot peppers with bite, and so much more. Steep Hill Food Co-op at 730 Broadway Avenue. No membership required. We're open to everyone, every day.
2: Looking for a membership that's as handy as a pocket on a shirt? Become a CFCR member today. You'll be supporting Saskatoon's only community radio station, and you'll unlock savings at amazing local businesses. Your CFCR membership card will get you 10% off at Early's Farm and Garden Center, Glitch Gifts and Novelties, The Conga Cafe, Paradox Pizzeria and Brewery, Turning the Tide Bookstore, and more. Get your membership today at cfcr.ca/membership.
3: वेलकम बैक और सिलसिला हम वहाँ से अपना जोड़ते हैं और हमारे फेसबुक लाइव पे लोग जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं. मैं आज के प्रोग्राम में सबको खुश आमदेद कहूँगा और खुश आमदेद इस सिलसिले में कहूँगा कि हमें बहुत ही एक अहम मौजू पे अपने सिलसिले में बात करनी है. जब मैंने इस मौजू का नाम रखा बैक टू स्कूल और वेलकम टू द यूनिवर्सिटी, उसका मकसद और कुछ दिनों में मुझे एहसास हुआ है, मैं हर दफ़ा इस पर बात करता हूँ लेकिन आज भी चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के सिलसिले से हम इस सिलसिले में ज़रूर बात करें कि हमारे बच्चे जब अगला कदम लेने लगते हैं, आज की नौजवान नस्ल जब अगला कदम लेने लगती है तो उसको एहसास होना चाहिए कि वो किस जगह पे अपना कदम रखने लगी है, कहाँ पे उसे कदम रखना है, कहाँ पे उसके अपनी मजबूत हाथ जा सकते हैं, कहाँ पे उनकी अपनी जो सलाहियतें मौजूद हैं, जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसके ऊपर कैसे हल कर सकते हैं. नज़दीक बहुत स्कूल आ गया है, समर बड़ा नज़दीक है, हमें पता है कि हमें इन्जॉय करना है लेकिन हमें अपने आने वाले दिनों के लिए भी तैयारियां करनी हैं. मैं पढ़ाई के सिलसिले में ज़्यादा बात करूंगा. एक दो तीन स्टेजेस होती हैं हमेशा हम बच्चों को जब भेजते हैं. एक यहाँ पर एक सिलसिला चलता है किंडरगार्टन में. किंडरगार्टन जब आप बच्चा आपका 5 साल का होने लगता है तो आप उसे अपने नज़दीकी स्कूल में जब दाखिल करते हैं तो वो एक अजीब सी खुशी होती है उसके लिए, उस बच्चे के लिए एक बहुत जो है वो एक्साइटमेंट का टाइम होता है कि उसने जो है वो स्कूल जाना है और उसके लिए हम उनको तैयार करते हैं कि उसने अपना एक पहला कदम स्कूल के अंदर रखना है, एक ऐसी दर्सगाह पे रखना है जिसने उसे आने वाले दिनों के लिए तैयार करना है. आने वाले दिनों के लिए जब आप अपने बच्चे को तैयार करते हैं तो वो एक माशरे का एक हिस्सा बनने जा रहा होता है, उसने माशरे के हिस्से से कुछ सीखना होता है. जब माशरे के उन हालात को उसने आगे फेस भी करना होता है, वो देखता है कि मैंने जब हमने इस मल्टी कल्चरल और मल्टी डाइवर्स कम्युनिटी में जाके उसने जब पढ़ना है तो एक तालीम का सिलसिला भी उसने हासिल करना है और एक रابطہ भी कायम करना है. ये तो है पहला फेज़. एक और बहुत अहम फेज़ है अक्सर जो एलिमेंट्री स्कूल से लोग बच्चे जब फारिग तहसील होते हैं 8वीं जमात से और वो नवीं जमात में हाई स्कूल में जाते हैं तो उनका एक अपना एक लेवल होता है और वो अपने आप को कुछ थोड़ा सा, हम भी जब अपने लड़कपन के ज़माने में थे तो जब स्कूल से जब कॉलेज में गए तो एहसास हुआ कि हम बहुत बड़े हो गए हैं और हमें अपना सिलसिला जो है वो इसी तरह ही जारी रखना है और हम अपने घर में और अपनी तालीम में हम आगे चले गए हैं. ज़ोर इस चीज़ पे देना है कि हमने उन दिनों में अपने कौन से सब्जेक्ट हमने लेने हैं, कौन से हमने अपने सब्जेक्ट्स को इंतखाब करना है। ये मैं तमाम उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, और खसूसन जो आपके पेरेंट्स हैं। अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि उनको इस दौर का एहसास नहीं है। एआई ज़रूर आ गई है, एआई सब कुछ नहीं बताती। एआई को बनाने वाला भी वो दिमाग है जो हमारे आपके अंदर है, उसी ने उसको ईजाद किया है, इसको किसी और ने ईजाद नहीं किया। तो इसलिए अपने उस जहन से, उस तजर्बे से, जो तजर्बा हमने ज़िंदगी के सालों में लिया है एज ए पेरेंट्स और एज ए वालदैन, हमने जो अपना एहसास लिया है, हमें उसको देखना है कि हमें इनको आगे क्या ले चलना चाहिए। मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि ज़रूर मौका दें बच्चों को इंतखाब करने का, वो कौन से तालीमी दर्स को इंतखाब करना चाहते हैं। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मैं चाहूँगा कि वो अपना उसमें, उस इनपुट में आप भी अपनी एक हिस्सा डालें, अपना तजर्बा भी उन्हें बताएं कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आगे चल के उन्हें काम दे सकती हैं। मैं अक्सर अपने तजर्बे से बताता हूँ कि अक्सर हम लोग कहते हैं कि ठीक है, कुछ लोग साइंस के सब्जेक्ट में नहीं आगे चल सकते, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉमनली आपको ज़रूर मुशाबत देती हैं, बहुत सारी चीज़ों से आपको आगे अपने करियर को बनाने में बहुत सारी मददगार साबित होती हैं। तो इनका ज़रूर ख्याल रखें कि आपने कौन से सिलसिले में अपना सिलसिला आगे जारी करना है। और मैं और जो यहाँ पे हाई स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चों को ऐसे मैंने देखा है कि वो अपना कई टाइम और वक्त जो है वो इस सोच में गुजार देते हैं। और शायद वो सब सोचना तब शुरू करते हैं जब वो 12वीं यानी 12th ग्रेड अपना क्रॉस कर लेते हैं या ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो देन दे स्टार्ट थिंकिंग ऑफ कि हमें आगे क्या करना है। और मेरा वहाँ पे सवाल उठता है कि इन 4 सालों में जब आपने अपने मज़ामीन जो है वो उनका इंतखाब किया, तो आपने क्या सोच के इंतखाब किया? और अगर उन मज़ामीन को की मुनासिबत जो है वो आने वाले दिनों के हिसाब से नहीं है, तो उनको कैसे आपने परखा और उनको कैसे जाना? अगर आपका कुछ बच्चों का एहसास लिटरेचर में होता है, मुझे इंतखाब से एतराज़ नहीं है, मुझे गलत इंतखाब से एतराज़ है, आपको अपने आप को पहचानने में अगर आपको आपकी गलती हो जाए और आप ये ना जान सकें कि आपको कौन से मज़ामीन को इंतखाब करना है, तो उसको भी ज़रूर सोचिएगा। ये तमाम दुनिया इतनी तेज़ चल रही है, जितनी तेज़ी से वैल्यूएट हो रही है और उसकी लिए जो जिद्दत आ रही है उसके साथ, उसकी रणाइयों को साथ देखते हुए आज लिटरेचर भी जल्दी इसलिए लिखा जाता है कि हमारे पास बहुत सारी सहूलतें मौजूद हैं। पहले एक कलम था और उसमें एक बहुत वक्त दरकार था कि आप कुछ लिखें और उसका एक कंटेंट जो है उसके लिए मीडियम बहुत थोड़े थे, आप वहाँ पे उसको कंटेंट को दे सकते थे। आप किताब को लिखना चाहते हैं, कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, आज अक्सर लोग घर बैठे बहुत सारे अपने काम जो है वो इसलिए कर लेते हैं कि वो कुछ चीज़ें वो YouTube से देख लेते हैं या कहीं से उनको मदद मिल जाती है, कई वीडियोज़ मिल जाती हैं, तो उन चीज़ों को वो अपने साथ साथ रखते हैं। लेकिन अगर इन चीज़ों का इम्तिजाज ना हो, इन चीज़ों का आपका सिलसिला ना हो, तो उनको बनाने के लिए या उनको करने के लिए भी आपको एक जो है मदद दरकार रहती है। तो उसके लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों का इंतखाब करें जो आपने आने वाले दिनों में आप करना चाहते हैं। ये तो हुई हाई स्कूल की बात। तीसरा एक इम्तिजाज आता है, वो है यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी में आप अक्सर अपने औकात जो है वो आपका एक फ़ाइनल एक इम्तिहान होता है। अगर आपने अपनी एक लाइन का इंतखाब करना है, ज़िंदगी में कभी भी ख्याल आ सकता है कि कौन सा बेहतर आपकी एक दर्सगाह है या सब्जेक्ट है, उसमें भी मुझे कोई दो राय नहीं है कि कभी भी आपकी चीज़ चेंज हो सकती है या आपका जहन तब्दील हो सकता है या आपकी स्ट्रेंथ्स जो हैं वो उसमें बढ़ सकती हैं। अल्लाह ताला ने सबको सलाहियतें दी हैं सब कुछ करने में, लेकिन एक वक्त में एक ऐसी सलाहियत होती है जो ज़्यादा काम कर रही होती है। हम में बहुत सारे लोग जो हैं वो मज़बूत हाथों से काम कर पाते हैं और कुछ मज़बूत कलम से काम कर पाते हैं। तो दोनों का इम्तिजाज मज़बूत हाथों से है, लेकिन एक की लिखने की जो है ताकत है वो ज़्यादा है اور ایک کے بازوؤں میں طاقت اتنی ہے کہ وہ اتنا وزن اٹھا سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم پہ اس کے پاس بھی وہ طاقت دی ہے. اس طاقت کو استعمال کرنے کے لیے, اس وزن کو اٹھانے کے لیے بھی دماغ کی ضرورت ہے, اور اس قلم کو اٹھا کے صحیح لکھنے میں بھی دماغ کی ضرورت ہے. ایک اچھی چیز اور اچھا کانٹینٹ لکھنے میں وہ چیزیں درکار ہیں جو آپ کا دماغ آپ کو دیتا ہے. ہم بہت ساری چیزیں, بہت سارا قصہ جو ہے وہ آج اے آئی کو دینے کو تیار ہیں. جب ہم بڑے ہو رہے تھے اور ہمارے ساتھ کمپیوٹر بھی بڑا ہو رہا تھا, اور اس ٹیکنالوجی ساتھ ساتھ بڑھ رہی تھی, اور اس موبائل کی ٹیکنالوجی کا سلسلہ بڑھ رہا تھا, تو اکثر لوگ کہا کرتے تھے یہ خراب کر رہا ہے. ہم اس کو اچھے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, اچھا پیغام دینے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, اچھی اپنی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور آپ نے اگر اچھی کوئی کام کیا اس کو پھیلانے کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں, نیکی کو پھیلانے کے لیے بھی کام آ سکتا ہے. تو میرا سوال پھر یہاں پر ہے کہ آپ نے اپنی صلاحیتوں کو دیکھنا ہے کہ آپ اپنی یونیورسٹی میں کون سی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتے ہیں اور کون سے سبجیکٹ میں لے کے جا سکتے ہیں. یہاں پہ ڈاکٹرز بھی بنیں گے, انجینئرز بھی بنیں گے, لٹریچر سے بھی کام کریں گے, آرٹ بھی ہوگا. آپ کی آرٹ کی بہت ساری لائنیں ہیں. آج ہر سبجیکٹ کے ساتھ ایک بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آج جو ہے پینٹنگ جو ہے وہ کمپیوٹر سے ہی بن جاتی ہے, لیکن ہاتھ کی پینٹنگ کا آج بھی وہ معیار ہے جو آپ اگر اپنے خود ہاتھوں سے ایک پینٹنگ بنائیں گے اس کا معیار کچھ اور ہے. ایسے ہی جیسے آج ہم بتاتے ہیں کہ جوتے مشینی بھی بن جاتے ہیں اور وہ جلدی بن جاتے ہیں اور زیادہ بن جاتے ہیں, شاید زیادہ آپ کو جلدی اس کا منافع مل جاتا ہے, لیکن جو ہاتھ کے جوتوں کا کمال ہے وہ آج بھی ہاتھ کے جوتوں کا کمال ہے. اس کو اس ہاتھ کے جوتوں میں آپ کو زیادہ نرمی, آپ کو ایک جو خوبصورتی ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے. تیسری جو بات ہے وہ ہے خوراک. ہر انسان کی ضرورت ہے, اور زیادہ خوراک آج کل جو ہے وہ ہم جو ہماری آبادی ہے دنیا کی وہ اس طریقے سے بڑھ رہی ہے کہ ہمیں تیزی سے خوراک کی ضرورت ہے, لیکن آرگینک فوڈ ہے. اگر آپ کوئی دیسی طریقوں سے, آج لوگ چھوٹے چھوٹے گارڈن گھر میں بناتے ہیں اور خوشی سے بتاتے ہیں کہ ہم نے آج یہ چیز اگائی اور ہم کرنا چاہتے ہیں, تو سلسلہ اپنا یوں ہی جاری رکھیں گے. لیکن اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ سب ضرور کامنٹ کریں اور بتائیں, اور اپنا جو ہے وہ بتائیں کون سے سبجیکٹ میں. اگر کوئی نوجوان سن رہے ہیں ہمارے ساتھ تو وہ بتائیں کون کون سے سبجیکٹ میں وہ جانا چاہ رہے ہیں. ہماری اپنی کمیونٹی, ساسکاٹون کی کمیونٹی جو ہے وہ کس سبجیکٹ میں جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کرنا چاہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی خوبصورت ایک یونیورسٹی دی ہے, یونیورسٹی آف ساسکاچوان, اور یونیورسٹی آف ساسکاچوان میں جو ہے وہ بہت سارے خوبصورت مضامین ہیں, اور ان میں آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کینیڈا میں بہت اس میں ایک وسعت ہے, بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ آپ اپنے جو ہے مضامین اپنے سلیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن اپنے مضبوط ذہن اور اپنی صلاحیتوں کے مطابق انہیں استعمال کیجیے گا. میں اپنے اس پروگرام کی وساطت سے سب سے زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان سنگرز کا جنہوں نے فوک فیسٹ پہ ہمارے ساتھ بہت ہمارا ساتھ دیا ہے. ہمارا ایک گروپ جو بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنا اور اس کا ایک ویلیویشن ہوئی اور وہ ایک ایوالو ہوا ہے سیون آئیز گروپ کے نام سے, اور اس گروپ نے جو فوک فیسٹ پہ اپنا دھمال مچائی ہے ان کو اللہ تعالیٰ اور کامیابیاں دے. ان کی ہی ایک جو خوبصورت آواز تھی شاید اس نے ہمیں بہت جو ہے وہ محظوظ کیا. میں ایک گانا اس میں ضرور چلا چاہوں گا, لیکن باتیں میرے پاس بہت ساری ہیں کرنے کے لیے. آپ نے اس درمیان میں ہمیں کال کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی کامنٹ کرنا چاہیں یا بتانا چاہیں کہ آپ اس سلسلے میں کس طرح ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنا کام کرنا چاہتے ہیں. میں بہت بول چکا, کوئی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ باتیں ہونا ابھی بھی ضروری ہیں, لیکن ہم سنتے ہیں ابھی ایک بہت ہی خوبصورت ہو لال میری پت رکھیو بلا. میں کوشش کروں گا کہ اگر میں اپنے فیس بک لائیو اپنے لوگوں سے ذرا زیادہ مخاطب رہوں اور ہمارے ریڈیو کے ناظرین جو ہیں وہ ہمیں سن سکیں, تو ہم اس کو جو ہے وہ چلتا رہنے دیں گے. میں ایک جو ہے یہ ایک فیوژن ہے ہلال میری کا, اور وہ ہے مومنہ جو ہے قرۃ العین بلوچ کی آواز میں, اور اکبر علی और इसमें आरेब अज़र भी मौजूद हैं. हम सुनते हैं एक खूबसूरत नगमा और एक सूफ़ी कलाम होलाल मेरी, और उसके साथ इस इन बातों का सिलसिला जो है वो हम जारी रखेंगे. इन सिलसिलों में जो है वो जो ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं चाहूँगा इस पर हम मज़ीद गुफ्तगू भी करें, और हम इस पर एक और प्रोग्राम आने वाले दिन में करेंगे ताकि जाने से पहले हमें एहसास हो कि हमें क्या चीज़ को करने की ज़रूरत है. सुनते हैं होलाल मेरी.

और हमें हमारी हौसला अफजाई करते हैं, तो उसमें बहुत हमें खुशी होती है कि लोग जो हैं वो हमारे साथ इतना प्यार करते हैं और इतनी हमें जो है वो जो है खुशी का इजहार करते हैं। उन्होंने फोक फेस्ट पे ये हमारी जो है वो इंडियन पवेलियन से थी और उन्होंने हमारा पूरा भरपूर साथ दिया। एक खूबसूरत दिन मनाया गया, पाकिस्तान पाकिस्तान डे मनाया गया और उसमें पाकिस्तान का जश्न मनाया गया। और अगले दिन जो है वो इंडिया का 15 अगस्त उनका इंडिपेंडेंस डे था और वो भी एक बहुत खूबसूरत तरीके से मनाया गया और सब लोग वहाँ मौजूद थे। ये एक हमें जो है इम्तिजाज पैदा करना है। और इवन दो कि वो नेक्स्ट 16 अगस्त वॉज जो है वो जो है बांग्लादेश का दिन था और उसको भी एक भरपूर तरीके से मनाया गया। चीज़ें हमें अपनी तरफ लेके आनी हैं और बताना है कि सास्काटून एक कम्युनिटी है, हम इसके लिए हमेशा अपनी जानिब से पूरी कोशिश करेंगे। मैं हर इंडिविजुअल के लिए बात कर रहा हूँ कि उन्हें हमें हर जगह पे इसके लिए कोशिश करने की ज़रूरत है। हमेशा ये ख्याल आता है कि कमी कहाँ पे है, कमी हम में होती है। कमी अगर आप ये बात करें कि कमी किस में है, तो वो हम में है और हमारी सोच में होती है। उसको एक वसत देना बहुत ज़रूरी है। अभी और थोड़ी सी कुरत रैन की आवाज़ सुनते हैं ताकि मैं चाहता हूँ कि किसी ने रिक्वेस्ट की है वो हम ज़रूर प्ले करें और साथ आपके साथ बातचीत भी जारी रखें।

नहीं, एक और बहुत खुशी की बात यह है कि एक और हमारे बहुत खूबसूरत कॉलर जो है उन्होंने हमें कॉल की, वजाहत बाजवा साहब ने, और उन्होंने कहा, बताया है कि वो हमारे प्रोग्राम को बहुत रेगुलरली सुनते हैं। बड़ा अच्छा फीडबैक ये दिया है कि हमें ज़रा थोड़ा सा जल्दी शुरू करना चाहिए प्रोग्राम को और बहुत रेगुलर शुरू करना चाहिए। वजाहत साहब ऑन एयर और ऑनलाइन जी, ठीक है जी। मैं इंशाल्लाह ताला आपसे वादा करता हूँ कि इसको हम पूरी रेगुलरली अब इसको प्रोग्राम को करेंगे। जब समर आता है तो थोड़ी सी कुछ चीज़ों की ऐसी मसरूफियत हो जाती है कि इस

0: वॉलंटियर जॉब में लोगों का बाहर आना जाना रहता है, और जो है उसके साथ साथ जो है वो प्रोग्राम्स का कुछ सिलसिला ऐसे आ जाता है कि वो जैसे अभी फोक फेस्ट आया था तो वो 14 और 15 को था, उस दिन सैटरडे था, तो वो कुछ प्रोग्राम जो है वो हो नहीं पाते। एक दफ़ा काइट फेस्टिवल था, वो हमें ऑर्गेनाइज़ करने में थोड़ा सा टाइम का ऊपर नीचे हो गया, तो कुछ चीज़ों का है। लेकिन आपने उससे पूछा है कि आने वाले दिनों में हमारे प्रोग्राम की क्या सिलसिला होगा, पूरी कोशिश करेंगे। हमने दो प्रोग्राम ऑनलाइन में रखे हैं, अगर मैं उसे अनाउंस कर दूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपको मैंने ऑफ एयर बता दिया है। लेकिन बहुत शुक्रिया सर कॉल करने का। मैं अपने प्रोग्राम के सिलसिले से जो है वो जो है आपको दोबारा एक पैगाम, जो मेरा और आप सबके लिए पैगाम है कि हमारी जो जो नस्ल है, जो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे आगे आने वाले दिनों के लिए हमारे लिए हमारा असासा है, और उनको उस उन चीज़ों को अपने लिए इंतखाब करना है यूनिवर्सिटीज़ में, जिनका आज मेरा आज का टॉपिक है, स्कूल में हों, यूनिवर्सिटीज़ में हों, और अगर वो पहला कदम खुद रखने वाले हैं उस किंडरगार्टन में, तो प्लीज़ खुदारा माँ बाप उनका साथ दें। स्कूल ज़रूर मेहनत करते हैं, बताते हैं, लेकिन हमें भी थोड़ी सी मेहनत अपने बच्चों के लिए करनी है। दरसगाह वो एक ऐसी जगह है, तालीमी दरसगाह एक ऐसी जगह है जिस पे कहते हैं जहाँ से तालीम हासिल की जाए वो जन्नत के एक बागों में से एक बाग होता है। तो हम सब तालीमात, वो साइंस हो, साइंस जो है वो हिस्सा है हमारे दीन का भी एक हिस्सा है, तो हमें साइंस भी सीखनी है और दीन भी साथ सीखना है, तो इन सारी चीज़ों को जो है वो साथ साथ लेके चलना है। तो हर तदरीस और दरसगाह जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा आज का खसूसी तौर पे इस प्रोग्राम को करने का मकसद, ऑन एयर जाने का मकसद सिर्फ इसलिए है कि हमें इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है। और एक ज़रूरी बात ये है कि एक चीज़ आपको ज़िंदगी में ज़रूर पसंद होती है, लेकिन वो ख्वाहिशात सब पूरी भी नहीं हो पाती। अगर वो नहीं हो पाती तो आपके पास एक प्लान और होना चाहिए, प्लान बी हमेशा ज़िंदगी में रहना चाहिए। अगर हम यहाँ नहीं होंगे तो हम कहाँ होंगे? आज ज़िंदगी हमें जो है जिस मोड़ पे यहाँ पे सास्कटून में ले आई है, ये शायद मैंने कभी बचपन में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आज ऑन एयर बैठ के सास्कटून में बैठ के आप लोगों से बातें कर रहा होंगा, और इस बात पर बातचीत हो रही होगी और चर्चा हो रही होगी इस बात के ऊपर कि हमें कौन से मज़ामीन जो हैं वो उनका इंतखाब करना है। मैं आप सब जो सुनने वाले हैं, जिनको मेरा पैगाम कुछ और दिनों में पहुंचेगा, मुझे शायद ये प्रोग्राम और पहले करना चाहिए था कि हमें अपने मज़ामीन का इंतखाब कैसे करना है, हमें अपने बच्चों के अंदर ये देखना कैसे है कि उनकी अपनी सलाहियतें किस चीज़ में हैं, वो किस तरफ जाना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मौके ऐसे हैं, आप म्यूज़िक में जा सकते हैं, आप एक्टिंग में जा सकते हैं, आप फिल्म मेकिंग में जा सकते हैं, ये तो मीडिया के हैं, आप कहेंगे इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन आपके साइंस के बहुत सब्जेक्ट हैं, डॉक्टरेट में हैं, सर्जिकल हैं, आप ऑर्थोपेडिक्स हैं, दिस लॉट टू गो आउट, ठीक है। आप उसके अलावा आर्ट में आ जाएं, आर्ट में आपके लिए और बहुत सारे हैं, स्कल्पचर्स हैं आपके पास, स्कल्पचर्स मेकिंग है आपके पास, ड्राइंग मेकिंग है आपके पास, एक सिलसिला है जिसको हमें चलाने की ज़रूरत है। रिसर्च के बहुत सारे मौके हैं, अगर आप से रिसर्च यहाँ करें शायद उससे आपको दुनिया को फ़ायदा होने वाला है, हम अपने लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, या इस शहर की कम्युनिटी के अलावा भी हम काम कर सकते हैं। ये शायद हमें अंदाज़ा हुआ जब हमने बहुत सारी चीज़ों को, जब हम आज यहाँ पर दुनिया में हम निकले हैं, वो कहते हैं कि वो एक था कि दीन या दुनिया हासिल करना हो तो आपको उसके लिए चाहे चीन जाना पड़े। आज टेक्नोलॉजी में पता नहीं वो चीन कहाँ से लफ्ज़ उस वक्त निकला था, लेकिन आज जो चाइना है वो काफ़ी सारी चीज़ों में, बहुत टेक्नोलॉजी में आगे भी जा चुके हैं, भरपूर दुनिया ने तरक्की की है बहुत सारी चीज़ों में। तो मेरा सवाल, मेरे पास वक्त बहुत कम है, 1 से 2 मिनट मेरे पास बाकी हैं, मैं आप सबों से सिर्फ यही गुजारिश करूँगा कि आपने अपने बच्चों पे इस बात की नज़र ज़रूर रखनी है। गो, बहुत मसरूफ़ दुनिया है, आज वालिद वालदा दोनों काम कर रहे हैं, शायद उसके बगैर गुजारा भी नहीं हो पा सकता, लेकिन उन चीज़ों में कुछ वक्त अपनी फैमिली के साथ निकालना। जब हम पिकनिक करने जाते हैं गाड़ी में बात कर सकते हैं, हम पूछ सकते हैं, घर वापस लेके आते हैं, वापस आते पूछ सकते हैं आज कैसा दिन गुजरा। मैं आज आप सबके साथ इस चीज़ को आपसे वादा करते हैं, हम सब वादा करें कि हम अपने बच्चों को ये ज़रूर पूछेंगे कि आज के दिन में उन्होंने क्या किया और कैसे दिन गुजरा। एक बहुत खूबसूरत बात, और वो चाहूँगा कि ज़रूर करूँ, एक छोटा सा एक बहुत ही खूबसूरत फेस्टिवल एक और सास्कटून में हो रहा है, हलाल फेस्टिवल, उस विक्टोरिया पार्क में ज़रूर जाएँ। देर इज़ वहाँ बहुत आपको जो है वो चीज़ें, आपको एक्टिविटीज़ मिलेंगी। सबसे ज़्यादा हमारा जो इम्तिजाज होता है वो फूड के ऊपर है, और थोड़ा सा बायस होके बात करूँगा, लेकिन बारबेक्यू जंक्शन भी वहाँ मौजूद होगा, वहाँ पे और बहुत सारे फूड होंगे वहाँ पे, और वहाँ पे जूसेस होंगे, तो ज़रूर जाइएगा। और हलाल वो जो हलाल फेस्टिवल है जिन्होंने सूर्य ने सब सब सब ने लोगों ने वहाँ पे कोशिश की है, उसको आपने कामयाब बनाना है, ठीक है। और ये हम सब का प्रोग्राम है, ये कम्युनिटी हमारी है, ये शहर हमारा है, हमें इस शहर को आगे लेके जाना है। एक और फिलिपिनोज का बहुत ही खूबसूरत एक और प्रोग्राम हो रहा है, रूट्स एंड रिदम्स प्रेरीलैंड पार्क में, आप वहाँ भी जा सकते हैं और बिल्कुल ज़रूर शामिल हों, तो उसमें हम शामिल होके भी अपनी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। सर्कस हो रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें शहर में हो रही हैं। इस दिनों को अच्छे तरीके से मनाएं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि उन्होंने इतने खूबसूरत दिन दिए हैं। और स्टे ट्यून्ड, मेरा वक्त ख़त्म हो गया है, जाने वाला हो गया, घड़े के कुछ जो है वो मैं सुइयों को तो नहीं देख रहा, लेकिन वो जो है हिंसों को देख रहा हूँ कि वो बढ़ते जा रहे हैं, और वक्त हो गया है मेरे जाने का। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सब जो हैं वो हमारे साथ शामिल रहें, अपने बच्चों के इस आने वाले दिनों को अपने साथ जारी रखें और देखते रहें। आपका मेरा साथ रहेगा अगले प्रोग्राम में, मिलते रहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका।
1: Cool days, fishing trips, barbecues, and every adventure in between. That's exactly why coming home just hits different. The fun's still on with Sastel Infinite 300 and Whole Home Wi-Fi. Sign up today and get corner-to-corner coverage for as low as $70 a month. Visit sastel.com/summer to get started. Conditions apply.
2: Sask Made Marketplace is the perfect place to experience farm-to-fork food with farm-fresh eggs, local produce, meat, and a variety of frozen on-the-go meals. There's also an ever-changing array of handmade, one-of-a-kind artworks, pottery, photography, books, and other artisan products. Visit Sask Made Marketplace at 1621 8th Street East at Gather Local Market or online at saskmade.ca to start your Saskatchewan farm-to-fork journey.
3: Summer is here, and the Saskatoon Symphony Orchestra is still your source for Saskatchewan's distinct, world-class, artistic musical voice. Share the joy, hope, and community of making music, and stay up to date on all the latest symphony news online. Plus, see the incredible lineup and subscribe to the latest season. The more you buy, the more you save. Give a gift, plan your next great night out, and make your life better with music. Visit saskatoonsymphony.org today.
4: Do you own a business in Saskatoon? Do you enjoy this program on CFCR? Now we come to the big question. Do you think other people who enjoy this program might be interested in your business? If you provide a good or service that would appeal to Saskatoon's multicultural audience, you should be advertising in this very spot. Call 664-6678 Monday through Friday during business hours for more details on how you can advertise on Saskatoon's community radio station, CFCR 90.5 FM.

0: Hello. Yeah, Salam Pakistan and good afternoon to Saskatoon. How are you all doing? I'm doing great. Tausi Ghazi Saab, kaise hain aap?
1: Alhamdulillah, I'm doing wonderful. How are you, Daniel?
0: I'm doing good. And this is Baithak. Okay.
1: Yeah.
0: Kya Baithak sajai aaj aapne?
1: Ji, aaj ki Baithak jo hai, wo hum dono kafi time baad Baithak mein
0: yes.
1: Ronak jamayenge, inshallah. Aur aaj ki jo Baithak hai ji, wo badi masroof hone wali hai aur badi gupshup hogi inshallah. Not only we are going to discuss whatever is going on in the city, around the globe actually, we will also be discussing what's going on in Canada as well as in Pakistan.
0: Daniel,
1: how was your week?
0: It was tiring. Folk fest tha, folk fest ke baad jo ek break hoti hai, theek hai, to break bhi li. Folk fest kafi busy raha, do din, you know, is dafa do din ka tha, usually 3 din ka hota hai. So uske baad break hui, you know, it's just relaxing.
1: Last week I learned about your position and responsibilities regarding folk festival, so tell us a little bit about that.
0: Great. To main abhi jo hoon wo folk fest ka vice president hu. Theek hai. 2 saal pehle main director bana tha folk fest ka. The way it works is like jo bhi hamare member countries hote hain, jo pavilions hote hain, they have like election every 2 weeks, 2 years, and then uske baad they actually nominate directors from their pavilion, and then, you know, different pavilion members, they vote, and usse director jo hai wo elect hote hain. Phir directors jo hai wo aapas mein hi elect karte hain apna president, vice president, you know, general secretary and finance
1: and
0: secretary.
1: You are vice president of
0: finance. I am currently vice president.
1: It's a big organization actually, especially in Saskatoon. Jo log Saskatoon mein rehte hain wo folk festival ke bare mein jante hain. Daniel and I have been a big part of folk festival, and I'm talking about only festival when I am counting on me, but Daniel is mashallah vice president of this entire organization, which does work tirelessly to bring this colorful cultural event to the city of Saskatoon every year. So Daniel, aaj ki jo baithak hai wo news se bharpoor hai, jo updates hain hum uske upar baat karenge, jo Pakistan mein chal raha hai uske upar baat karenge, uske alawa jo Canada mein ek tariff war chal rahi hai, we are not really getting that fresh breezes from the southern part of this world, kyunki hame bahut zyada Mark Carney as a prime minister is running this government, I would say, quite successfully, despite all the challenges his government has to face right now coming from Donald Trump.
0: Yes.
1: So, isi hawale se aaj hum baat karenge ki Canada ki jo local news hai, hum usko discuss karenge, aur Canada America ki jo tariff war chal rahi hai, uske hawale se hum baat karenge. Aur abhi, just to start with that, how Mark Carney has been facing challenges from Donald Trump. Donald Trump regarding whether it comes to tariffs, whether it comes to opening a new bridge in Windsor, Ontario. So I was just there first week of August, just say kuch chand din pehle hi, Gordy Howe jo bridge hai wo open hua hai, which is very beneficent and a good thing, positive change for citizens of Ontario's and especially citizens of Windsor.
0: Perfect. Aur jo uski opening thi uske hawale se aap agar batana chahe ke wahan jo ke achanak se usko mere khayal se opening mein usko change kiya gaya, Donald Trump ko wahan par hona tha, nahi hue, us hawale se aap kya batayenge?
1: Dekhiye, it's all about power and politics.
0: Yeah.
1: And these are the words exactly coming from the mouth of Ontario minister. Aur it's all about power and politics. Donald Trump is carrying such characteristics which always wants to be in limelight.
0: Yeah.
1: He always wants to showcase his power in politics.
0: That I have upper hand.
1: Yes, that's right. And he's quite successfully when we take a look at the news and updates around the globe. So specifically talking about that bridge, not only one time, but 3 times that American administration has stepped back in 11th hour.
0: Okay.
1: Because every time they were changing. तो मैं अपने बैठक के ऑडियंस को जो है वो बताना चाहूँगा कि तकरीबन $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई थी इस ब्रिज के ऊपर, जो कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट में स्टार्ट हुआ था, स्टीफन हार्पर जो ट्रूडो से भी पहले
0: था
1: प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, तब ये ब्रिज कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था एंड इट टुक मोर देन टू डेकेड्स, सो ऑलमोस्ट 25 इयर्स टू कंप्लीट दिस ब्रिज. इसमें 100% जो इन्वेस्टमेंट है वो कैनेडियंस की है, कनाडा की है, इसमें यूएस ने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया. बट राइट एट द मोमेंट जस्ट बिफोर इट वाज अ गुड डे एंड इनॉग्रेशन डेट, Trump just stepped in and he just started his politics, his typical politics.
0: क्योंकि ये जो ब्रिज है इसकी पहले मुझे बताएं बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बराबर में एक और ब्रिज भी तो है.
1: जी इसकी एक ब्रिज नहीं है
0: मेन जो
1: टू वेज हैं बेसिकली, ब्रिज एक ही है, यू आर राइट. सो दो बेसिकली पाथवेज हैं जो ओंटारियो को मिशिगन से जोड़ते हैं, एक टनल है और एक एम्बेसडर ब्रिज है. एम्बेसडर ब्रिज इज ऑल्सो प्राइवेटली ओन्ड बाय फैमिली और जिसकी वजह से जो है वो उसके टैक्सेस और फीस और चार्जेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा थे और उसमें जो है वो यूएस की उसकी बिल्डिंग में भी उसकी कंस्ट्रक्शन में भी
0: यूएस
1: की इन्वॉल्वमेंट थी. सो जस्ट टू कीप इट मोर इकोनॉमिकल फॉर डेली ट्रांसपोर्टेशन फॉर डेली ट्रेवलर्स एंड ऑफकोर्स द ट्रकिंग इंडस्ट्री, Canada needed to have another one which is more government owned and government would have their upper hand in the functionality of the bridge.
0: No, so, that's great.
1: Ye hai baki
0: and after Kuzma is not signed obviously we're going to go there.
1: Yeah.
0: Ab, abhi to traffic mere khayal se slow chal raha hai ya kya hai
1: gaadi ki?
0: Yeah dono ki
1: उतनी अपने फ्लो में ट्रैफिक नहीं आई. उसकी वजह यह है कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज थी जिनके 4 साल 5 साल 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स थे ब्रिज के साथ, दे आर स्टिल गोइंग
0: ऑन,
1: राइट. सो ऑफ कोर्स द ट्रैफिक हैज बीन किकिंग ऑन, उस पर फ्लो चल रहा है. लोग जो रेगुलर जो जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, दे आर नॉट बाउंड इन द कॉन्ट्रैक्ट्स, सो दे प्रेफर, दे आर एक्चुअली प्रेफरिंग ईदर टनल. And then primarily they're preferring the Gordie Howe Bridge because it's more economical. Lekin jo trucking industry hai, jo transportation companies hai, unki jo ke contract chal raha hai ambassador ke saath, to wo udhar ja rahe hain.
0: That's something is interesting ke aap jagah ko bhi kisi transportation company ke contract ke saath bound kar dein. This is the first time I heard this.
1: हाँ जी, जो जो बड़ी कंपनीज हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 साल 5 साल के लिए.
0: यू हैव टू यूज दिस पाथ,
1: यू आर गोना यूज ओनली दिस रूट
0: इफ
1: यू आर एंटरिंग टू मिशिगन. एंड ऑफ कोर्स दैट्स हाउ दीज इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर जनरेटिंग द मनी. लेकिन अभी जो लास्ट फ्राइडे, टुडे इज सैटरडे, सो लास्ट फ्राइडे राइट मिडल ऑफ द नाइट, दिस टाइम इट्स नॉट द ट्रंप बट इट्स द मार्क कार्नी हु हैज स्टेप्ड बैक on these tariff negotiations. Uski wajah ye thi ke as usual Trump was putting unnecessary tariffs. Aur wo bilkul biased the, wo he was 100% thinking about US, but this actually shouldn't happen when you are more focused on good relations with your neighbors, right?
0: But so, where do you see the future? I know hum bahut sari baaton ko skip karke kar rahe hain, lekin ye कि अभी 50% उन्होंने लगा दिया, उन्होंने और मार्क कार्नी ने डॉलर टू डॉलर आपके टैरिफ लगा दिए. हु इज गोना सफर?
1: वेल आई वुड से अगर हम फैक्टफुली बात करें तो यूएस डज हैव अ स्ट्रेंथ इन दिस, बट आई वुड से मार्क कार्नी इज डूइंग वंडरफुल, ही इज डूइंग परफेक्टली द वे ही शुड बी डूइंग. And after China, Canada is the only country who has retaliated. And we have been witnessing this war for like more than 2 years now.
0: Two and a half years.
1: So definitely for now, Canada seems to be in hot waters, but definitely they are retaliating. So future ki agar hum baat karein, to soon, and when I say soon, so pretty soon, inshallah, US will definitely understand this thing that unhappy neighborhood is not going to be beneficial for US as well.
0: Because ek ek jo part hai, obviously jo trucking industry hai wahan par, wo zyadatar gaadiyon ke parts ko hi idhar se udhar karti hai, main kaam unka yahi hai. Wo ek ek part jo hai wo you know I think 2 se 3 dafa Canada mein enter hota hai aur 2 se 3 dafa US mein bhi enter hota hai. So every time if it goes in, you know, tariff lagega aur har cheez ki price increase hogi. तो आई डोंट थिंक सो कि जो जो जो कंपनीज हैं मेन कंपनीज जो हैं वो तो यूएस है ना, हमारी कनाडा की तो कोई कंपनी नहीं है. तो यूएस जो कंपनी है दे विल एंड अप यू नो गोइंग टू ट्रम्प सेइंग हे यू गॉट स्टॉप दिस.
1: या इन अर्ली 90s जो डेट्रॉइट सिटी है ना मिशिगन का,
0: या
1: सिटी वाज लाइक अ बैकबोन टू रन द यूएस इकॉनमी. दिस वाज द स्टेटस ऑफ दैट सिटी डेट्रॉइट. अब वो जाहिर है अपनी रोशनियाँ खो चुका है, इट डजंट हैव दैट मच वर्थ नाउ अनफॉर्चुनेटली. और वहाँ पे गाड़ियों के प्लांट्स होने के साथ साथ जो विंडसर ओंटारियो है, इट वाज वन टाइम ऑटो कैपिटल फॉर कनाडा. यहाँ पे गाड़ियों के प्लांट्स थे जहाँ एक्चुअली गाड़ियाँ बनती थी क्राइसलर और फोर्ड और इस तरह के ब्रांड्स के, लेकिन बैक इन 2009 ये प्लांट्स बंद हुए, डेट्रॉइट में बंद हुए. बहुत बड़ी बिल्डिंग है, अक्सर जब आप ये गोर्डी हाउ या एम्बेसडर ब्रिज का देखेंगे ना तो जनरल मोटर की एक बड़ी बिल्डिंग नज़र आती है. नाउ दैट इंटायर बिजनेस इज बीन सोल्ड. अब वो जनरल मोटर की बिल्डिंग नहीं है, उसको सिंपली GM बिल्डिंग कहा जाता था, अब आई थिंक किसी और कंपनी के पास है. तो दैट्स द अनदर रीजन दैट Donald Trump is more interested in putting on more tariffs and grabbing and bagging more money end of the day. Aur abhi jo contract hua hai jiski base pe ye inauguration hui thi is bridge ki 27 july ko ye open officially hua tha aur 27 july se literally 12 ya 18 ghante pehle FIFA ka world cup tha where Trump and Mexican
0: Prime Minister.
1: President, I think, और जो Prime Minister Mark Carney है Canadian, ये सारे एक ही stage पे करे थे. And right after, and then until up to that point, we Canadian were expecting to have US and primarily Donald Trump's
0: meeting,
1: participation in that inauguration ceremony of that historical bridge. लेकिन मैं उसका बता रहा हूँ कि आखिरी hour में वो भी Trump step back.
0: Yeah.
1: Just to gain more money. But अब जो उनका हुआ है.
0: Yeah.
1: के फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स द 50% ऑफ द टैक्सेस एंड द एडमिन फीसेस एंड द एंट्री फीसेस वुड बी गोइंग टू यूएस.
0: अब जो इसको मैं इस तरीके से भी देखता हूँ, बाइडन के एरा में
1: जी
0: चाइनीज कार मैन्युफैक्चरर हो जो कि मोबाइल मैन्युफैक्चरर टेक्निकली हुआ वे, उन्होंने एक गाड़ी बनाई. ठीक है, जब वो गाड़ी आपके सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर हो रही थी तो उसी टाइम पे अमेरिका ने गाड़ियों पे 200% कुछ करके टैरिफ या जो भी है लगा दिया. और कनाडा ने उसका साथ दिया, कनाडा ने उसको एक्सेप्ट किया. अब ये क्या मूव थी? और जाहिर सी बात है ये मूव ये थी कि ताकि अमेरिकन गाड़ियों को जो है वो यहाँ पर इजीली बिक सकें. ये चाइनीज गाड़ियाँ वो गाड़ी थी जैसे अगर आप एग्जाम्पल दें वो टेस्ला से एक दो लेवल ऊपर थी और उसकी कीमत टेस्ला से आधी थी. तो यहाँ पर आती तो एक अलग किस्म की मार्केट क्रिएट हो जाती. लेकिन अब क्या हुआ, जब ये टैरिफ वाली वार चल रही थी और यू नो मार्क कार्नी साहब ने अपने सारी कोनियाँ दिखाई, तो अब 2 महीने पहले चाइनीज ईवी पे वो जो भी टैरिफ था, जो भी उसके ऊपर एक्स्ट्रा पैसे लगने थे, वो ख़त्म कर दिया. उसका इफेक्ट जाएगा बहुत ज़्यादा. फिर जो अमेरिकन गाड़ियाँ अब वैसे तो अभी आ रही हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी शुरू होंगी, वहाँ से वैंकूवर से शुरू होगा.
1: America never wanted Canada to partner up with any other country when it comes to auto, क्योंकि Canada और America की auto trades के हवाले से एक बड़ी history है. Canada and America have been like really good friends in good and bad times. तो लेकिन अभी Mark Carney ने अपनी official जो social media platforms हैं वहाँ से उन्होंने अपनी statement जो है वो issue की है कि किस वजह से he needed to step back in 11th hours of the negotiations and this time Mark Carney did it. Lekin ab iska ek fayda bhi hai aur nuksan bhi hai.
0: No, and honestly speaking hum log to obviously yahan par naye hain, mujhe 10 saal hue, aapko shayad 20 saal hue, hame bahut zyada history US aur Canada ki hum log padhte nahi hain. This is not the first time America and Canada are going on to like this tariff and you know economic war. मेरी बात हो रही थी ब्रैड रेडिकॉप से, कंजर्वेटिव लीडर से, तो उन्होंने बताया 60s में सिमिलर सिचुएशन थी. दैट्स व्हेन आई थिंक द फर्स्ट टाइम वो उन्होंने कूजमा साइन किया था. तो यू नो थिंग्स हैपन बट राइट ऑब्वियसली उस टाइम पे लीडर जो भी थे अमेरिकन कैनेडियन वो थोड़े से शायद उनके वो लोग एक दूसरे को यू नो दे वर ट्राइंग टू फाइंड विन विन सिचुएशन फॉर बोथ. बट राइट नाउ आई थिंक डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो हैं वो बोल रहे हैं सारा विन विन मेरे को ही दो और तुम जो है बस वो क्योंकि हमारे टुकड़ों पे पलते हो तो फिर वैसे ही चलो.
1: Yeah.
0: तो अभी वो लीडरशिप वाली नहीं है तो इट्स गोना बी टफ.
1: Yeah, no, that's definitely, or U.S., not only Canadians, but I think U.S. citizens also are very astonished and they're surprised by performance of Donald Trump, because it's not really U.S. friendly, mm-hmm. right? You need to have good terms with your neighborhood, or neighbors ko ki aap ek saath hi prosperity ki taraf jaate hain. Agar aap ek hi dafa mein sari wars open kar loge, you are involved in Iran, you are involved in Afghanistan, and you were, and now you are having a tariff war in Canada as well. Jabki aapko pata hai ki Canada is the most immediate country that we can have the trading with. Ab South Asian ki taraf jate hain, Russia ki taraf jate hain, to usse to Canada kareeb hai na. To us wale se Canada can be more beneficial only if Trump wants. But if he wants to keep up with his same characteristics of like showcasing his power in politics, I don't think U.S. Donald Trump's team can go that far.
0: नहीं आप फिर ग्रीनलैंड में देखें क्या करना चाह रहे हैं ठीक है और डच जो हैं उन लोगों से पंगा ले रहे हैं यानी ऑब्वियसली एक यूरोपियन एक वहाँ का एक यूरोपियन जैसे वो लोग बोलते हैं ना मुस्लिम ब्रदर वहाँ उनका यूरोपियन ब्रदरहुड भी है जो कि उसको वो डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं उसके अंदर जाके कीड़े निकाल लें और दैट्स गोना टेक हिम नोवेयर दैट्स अंडरस्टैंडेबल. मेरे ख्याल से ब्रेक लेते हैं एड जो है ना वो लाइनअप हो गए ऑलरेडी तो ब्रेक के बाद आते हैं यहाँ पर तो जो फेसबुक पे हमें सुन रहे हैं वो तो सुनते रहेंगे और ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आते हैं. डोंट गो एनीवेयर.
2: Vehicle issues this summer? We fix almost everything, including air conditioning. I recommend a vehicle inspection before any road trips to make sure you don't have any avoidable breakdowns. OK Tire also carries all major brands of tires as well as economy tires that fit most vehicles, including campers and trailers. Did you know that most tires lose 1 pound of air per month? If you haven't checked your air pressure in a while, come in for a top-up and complimentary tire inspection. OK Tire. Service, repair, and tires.

0: Gee, welcome back, and you are listening to your very own show, Baithak. Time जो है 2:02 हो गए हैं. मौसम जो है बहुत गर्म है, cloudy भी है साथ साथ, partially 27 डिग्री हो रहा है. और सैटरडे है, घूमें फिरें, बाहर निकलें, इन्जॉय करें अपना दिन जो है अपनी फैमिली के साथ, और हमारा शो सुनते रहें. जी तौसीक भाई,
1: वेलकम बैक. आप लोग सुन रहे हैं बैठक, और आज मैं बड़ा खुश हूँ. उसकी दो वजूहात हैं. एक तो ये है कि आज मेरे साथ दानियाल मौजूद हैं और बैठक स्टूडियो में. आप गाने सुन रहे हो?
0: मैं साथ साथ गाने भी सुन रहा हूँ, लेकिन मज़ा, लेकिन आपकी बात बहुत अच्छी तरीके से.
1: तो दानियाल हैं जी. दानियाल मुझे बैठक स्टूडियो को बड़ा सपोर्ट किया है. जब मैं यहाँ पर स्टूडियो में नहीं होता तो दानियाल मौजूद होते हैं. सो थैंक यू दानियाल. दूसरी जो मेरी खुशी की वजह है वो ये है, एंड आई वांट योर ओपिनियन ऑन दैट. पहले तो मुझे ये बताओ कि कौन सी चाय पसंद है आपको?
0: कड़क चाय.
1: अच्छा,
0: कड़क पाकिस्तानी कड़क चाय.
1: दैट्स गुड. इलायची वाली भी होती है?
0: इलायची वाली होती है, बिल्कुल. उसके अंदर थोड़े थोड़ा इलायची का टेस्ट आ रहा हो, थोड़ी थोड़ी मीठी हो, ज़्यादा मीठी ना हो, और कड़क हो, सॉलिड होनी चाहिए. दूध होना चाहिए, दूध मतलब पानी नहीं चाहिए मुझे.
1: चीनी रोक के, दूध ठोक के.
0: चीनी थोड़ी सी दे के और मलाई ठोक के. बिल्कुल
1: ठीक है, ठीक है. आई एम नॉट रियली बिग फैन ऑफ मसाला चाय, बट कड़क चाय. एंड आई फेल इन लव अगेन व्हेन आई ट्राइड दिस कड़क चाय एट न्यूली रिनाउंड फ्रेंचाइज बिजनेस ओपन्ड इन सास्केटून. चाय वाला तो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, आमिर राव साहब, उनका ये बिजनेस है चाय वाला लंदन, इधर सास्कटून में. उन्होंने अभी लास्ट वीक ही ओपनिंग हुई है. तो या आई ट्राइड चाय, कड़क चाय एट हिज रेस्टोरेंट.
0: यप.
1: एंड द टेस्ट वाज
0: ग्रेट.
1: यू गाइस शुड ट्राई.
0: यस,
1: राइट.
0: यस, मैं कल अपनी फैमिली और दो तीन और फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन सब के साथ गए हुए थे हम लोग. पूरी एक बड़ी, क्या बोले, टब्बर.
1: हाँ,
0: टब्बर साथ लेके गए थे हम लोग, और वहाँ बहुत रश था. माशाल्लाह, पूरा भरा हुआ था. आपको ऑर्डर करने के लिए भी 20-30 मिनट वेट करना पड़ रहा था. अंदर तो जगह नहीं थी बैठने की, तो हम लोगों ने जो है वो बाहर बैठ गए. बाहर जो थी वो कुछ चेयरें थी जो कि हमने कब्ज़ा कर लिया, कब्ज़ा माफिया की तरह. और जो फैमिली, यानी वाइफ वगैरह और बच्चे वगैरह, वो उनको वहाँ सेटल कर दिया. नहीं, उनको वहाँ सेटल कर दिया. फिर हम लौंडे क्या करें, अब अंदर भी नहीं बैठ सकते, बाहर भी नहीं बैठ सकते. तो हमने पूरा जो है ना वो देसी स्टाइल किया. हम लोगों ने चाय पकड़ी, बर्गर्स पकड़े जो वहाँ पर थे, और हम लोग जाके अपने गाड़ियों के पास जो है ना मुंडेर पे जाके बैठ गए.
1: सही.
0: सड़क पे.
1: आप लोग एक काफी 3-4 फैमिलीज गए थे.
0: Yes.
1: I'm sure आप लोगों का ऑर्डर भी काफी बड़ा होगा.
0: Yeah.
1: So, how was your experience? आपने जो एक ऑर्डर किया 2-4 डिशों का, ज्यादा डिशों का, डिशेस का.
0: Yeah.
1: तो उसमें से what was your most favorite thing?
0: जो मेरे क्योंकि I have like a sweet tooth, so मुझे जो है ना उनके जो कौन सा केक था यार,
1: दुबई केक.
0: हाँ,
1: दुबई चॉकलेट केक.
0: और पिस्टैशियो केक जो था ना वो बहुत ज़बरदस्त था. मतलब इट वॉज नॉट सुपर स्वीट. आप यहाँ पर यूजली केक वगैरह खाएं तो आपको स्वीट बहुत लगते हैं, राइट. वो बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं था, लेकिन इट वॉज टेस्टी, इट वॉज क्रीमी. आई रियली लाइक्ड इट. चाय उनकी बहुत अच्छी थी. आई वांट अस से क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाओ भाई, लेकिन चाय मज़े की चीज़ ज़्यादा चाहिए होती है यार. डेफिनेटली क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाओ, एंड यू नो एवरीवन विल लव इट.
1: Well, Chai Wala is the 29th, this particular location is 29th location, and
0: in Canada or?
1: In Canada. They are already in the market for quite some time in Ontario and BC and like bigger cities of Canada. Aur abhi Saskatoon, aur main, to be honest, Chai Wala Saskatoon aaya hai, to ab Saskatoon lag raha hai ki hum bhi ek bada city hain. Kyunki pehle चाय वाला का टेस्ट आपको करें, आप टोरंटो जाते
0: थे, एडमंटन, कैलगरी वगैरह जाएंगे.
1: यस, सो सास्केटून हैज अ चाय वाला. सो सास्केटून इज ग्रोइंग, राइट.
0: या,
1: सो आई वुडंट बी रॉन्ग सेइंग दिस, दैट चाय वाला हैज सेट अ न्यू ट्रेंड इन सास्केटून.
0: यस,
1: दैट सास्केटून इज अ बिगर सिटी नाउ. तो एनीवे,
0: कल मैंने देखा सारी कम्युनिटीज से लोग, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं थे वहां पर. मैंने कुछ इंडियन फ्रेंड्स थे वो भी थे वहां पर, बांग्लादेशी फ्रेंड्स थे, अपना सिख फ्रेंड्स थे वहां पर, सब थे. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. और हर कोई हर किस्म का खाना ट्राई कर रहा था, और उसमें टेस्ट के हवाले से मैं बोलूं कि टेस्ट जो है वो अपना बिल्कुल जो है ना ऑथेंटिक, बहुत ही अच्छा टेस्ट था
1: घर वाला, टेस्ट
0: घर वाला फील आ रहा था कि यार दिस अ गुड वन. जो मैंने उनका दूसरा जो था वो मेरे ख्याल से उसको कबाब बोलेंगे, अंडे वाला बर्गर जो होता है ना, जो अंडे वाला बर्गर,
1: they do have अंडे वाला बर्गर,
0: अंडे वाला बर्गर चाहिए, अंडे वाला बर्गर खाया बड़ा अच्छा था वो. उनका जो चिकन एंड आई थिंक टिक्का एंड चीज सैंडविच था वो भी बहुत अच्छा था. जो बच्चे उनके फ्राइज जो खा रहे थे, फ्राइज का मैं बताऊँ, यू नो हम लोग यहाँ पर फ्राइज खाते हैं वो ज़्यादातर जो है ना वो मैकडोनल्ड के फ्राइज बहुत मशहूर हैं, क्योंकि उसके एक, एक एक अच्छा सा एक टेस्ट आता है. तो बच्चों ने जब खाया तो बच्चों ने बोला पापा इट टेस्ट लाइक मैकडोनल्ड फ्राइज, सो विच इज़ गुड. दो तीन ही फ्राइज हैं यहाँ पर जो अच्छे लगते हैं मुझे खाने में, एक मैकडोनल्ड के, एक हो गए अलिफ रेस्टोरेंट के, उसके भी बड़े अच्छे और इनके भी बड़े अच्छे थे.
1: जबरदस्त. We still have one more hour to sit in the studio, and I want to be enough of talking of food because it's so mouth-watering, and I am already getting hungry. So anyway, Chai Wala of London is finally opened in Saskatoon, and they are doing successful business, mashallah, and they are in Evergreen in Saskatoon. So go check out their wonderful taste. Jo meri favorite tha wo paratha. Saskatoon. to have Chai Wala. So, which track we have on the queue?
0: मैंने एक instrumental चलाया है. Music चलता रहेगा सौंदा सौंदा सा पीछे.
1: So, let our Facebook audience listen as well.
0: Okay.
1: And we're just going on a musical break, and we'll be right back. Stay tuned. Keep listening and watching Batik Studio.

0: जी वेलकम बैक। पीछे पीछे म्यूजिक सुनते रहे और अब हमारी जो है ना वो गुफ्तगू भी आप सुनते रहिएगा।
1: गाना चल रहा है, आप सुनते हैं ना, हम भी सुन रहे हैं।
0: नहीं नहीं पीछे, हाँ नहीं नहीं, लेकिन रेडियो वाले तो सुन रहे हैं ना।
1: रेडियो वाले भी सुनेंगे, हाउ अबाउट के फेसबुक वाले भी सुने। आप हेडफोन को ऑफ कर दो,
0: हेडफोन
1: ये रेड वाला
0: हेडफोन,
1: और वो साथ वाले को थोड़ा सा ऊपर कर दो। नहीं साथ वाले
0: नहीं हो रहा।
1: अच्छा एनीवे अभी फेसबुक लाइव
0: मेरा भी म्यूजिक बंद करा दिया
1: है, आप उसको ऑन कर लो। वो है येलो मॉनिटर वाला नॉब, उसको ऊपर करोगे तो आ जाएगा।
0: ओके लेट्स लेट्स ट्राई दैट। नहीं आ रहा,
1: ब्लू वाले को ट्राई। एनीवे फेसबुक पे हमें शकील अजीज शकील भाई का कमेंट आया है, अस्सलाम वालेकुम सास्कटून, और थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है। We will try to speak little louder now, क्योंकि आज हम माइक्स नहीं यूज कर रहे।
0: Yes. तो
1: एनीवे जी बात जो है वो हम ट्रंप और कार्नी की बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, और टैरिफ्स की और ये सारी चीज़ें हुई हैं। मैं समझता हूँ ऑन लाइटर नोट के जो कैनेडियंस जिस बात का गुस्सा कर रहे हैं वो ये है कि ये हॉकीज़ के ऊपर भी जो इन्होंने टैरिफ लगाया है, और हॉकीज़ को लेके आइस हॉकीज़ जो होती हैं उसको
0: आई थिंक वो ज़्यादा बड़ा दुख है,
1: वो ज़्यादा बड़ा दुख है ना
0: कैनेडियंस को लेके, वो ज़्यादा बड़ा दुख है। दो चीज़ें ही तो हैं, एक मेपल सिरप और एक हॉकी है, तो उनमें से एक चीज़ के ऊपर अब यूनि 50% उनकी आइडेंटिटी के ऊपर अगर आप टैरिफ लगा दोगे सो You are up for something crazy.
1: हाँ लेकिन उसका apart from jokes अगर हम देखें तो Mark Carney Prime Minister जो हैं उन्होंने फिर right away retaliate किया है, and a good thing about his cabinet is that all provinces, especially जो Dartford हैं, Ontario Premier, they are all on the same page.
0: That's
1: along
0: good.
1: With Mark Carney. और हमने देखा है, we being Pakistan living in Canada, हमने देखा है कि जंग सिर्फ गोलियों और बारूद वाली नहीं होती, ये टैरिफ वार भी होती है, राइट?
0: Yeah.
1: और टैरिफ वार जब 2.5-3 साल पहले शुरू हुई थी तो हमने देखा था कि क्या छोटा स्टोर है क्या बड़ा स्टोर है, सब ने प्रायोरिटाइज्ड कैनेडियन प्रोडक्ट
0: को किया,
1: नॉट ओनली फ्रॉम द कंज्यूमर्स बट ऑल्सो द मैनेजमेंट जो है वो उन्होंने बाकायदा लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, जो जो कैनेडियन प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस के साथ कैनेडियन फ्लैग का लोगो भी लगा दिया, सो वी वुड नो दैट इट्स कैनेडियन, एंड वी हैव सीन, एंड आई थिंक बिसाइड द गुड गवर्नेंस ऑफ मार्क कार्नी, कैनेडियन जो सिटीजंस हैं दे आर आल्सो प्लेइंग अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल रोल इन दिस वॉर।
0: बट व्हाट अबाउट दोस सुपरमार्केट चेन्स, वॉलमार्ट, दे आर नॉट कैनेडियन,
1: दे आर नॉट, दे आर डेफिनेटली नॉट कैनेडियन, बट येट दे आर
0: their employees obviously Canadian.
1: They are employees of Canada. They are making their bread and butter from Canadian economy, and also at the same time they are playing again a good role in Canada's economy as well. So in order to counter those things, Canada, as I mentioned earlier, they have decided to retaliate.
0: Yeah.
1: And just last night on Friday, last night at 12 a.m. actually middle of the night. Mark Carney has stepped back from the negotiations, और अब इन्होंने भी कुछ प्रोडक्ट्स पे जो है वो 50%
0: जो अब न्यूज अगर आपने देखी है जाहिर सी बात है तो उसमें अभी यू नो डेडलॉक क्या है, व्हाट इज द डेडलॉक, व्हाई दे आर नॉट यू नो मूविंग फॉरवर्ड, इज जस्ट द एटीट्यूड और इज देयर इज लाइक सम टेक्निकलिटी,
1: इट वाज एटीट्यूड अंटिल लास्ट नाइट,
0: ओके,
1: एंड दैट एटीट्यूड वाज बीइंग पोर्ट्रेड बाय अगेन यूएस, एंड वी आर डेफिनेटली नॉट सेइंग दिस बिकॉज़ वी आर कैनेडियन, यूएस की तरफ से ये एटीट्यूड शो हुआ है, अगेन जस्ट कोटिंग व्हाटएवर हैज हैपेंड, इफ वी टॉक अबाउट द गोर्डी हाउ ब्रिज, इफ वी टॉक अबाउट लाइक कैनेडा यूएस ट्रेड वॉर, तो और दिस इज द फर्स्ट टाइम मार्क कार्नी हैज स्टेप्ड बैक.
0: Yeah.
1: But we have witnessed like at least three, four times, U.S. to have a step back. Why?
0: Yeah.
1: So attitude, politics, power has been a very strong barrier and hurdle.
0: Because I know like koi technical issue ho sakta nahi, because I think they're doing, you know, they're doing business for almost like half a century, more than half a century.
1: Mm-hmm.
0: So... टेक्निकल इश्यूज को ये लोग इजीली टेक केयर कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं,
1: सो नो मैटर हु हैज द अपर हैंड, बोथ ऑफ द कंट्रीज वुड डेफिनेटली नीड टू रियलाइज दैट दिस नीड्स टू बी एंड, एंड दिस नीड्स टू बी एंड इन फेवर ऑफ बोथ कंट्रीज,
0: या
1: बिकॉज़ बोथ कंट्रीज हैव स्ट्रांग हिस्ट्री, एंड डेफिनेटली दिस इज अ फैक्ट डिस्पाइट ऑल दीस वॉर्स एंड डिस्प्यूट्स दैट we are going to survive with each other's economy. We are Definitely. Relying on each other.
0: Yep. You cannot fight with your neighbors for a long time.
1: And trust me, Canada doesn't have only maple syrup.
0: Yeah.
1: We have much more things to offer.
0: Lumbers, Ukrainian. Yes. You never not Ukrainian, uranium. We have Ukrainian, Ukrainians.
1: Let alone everything, but just the hockeys.
0: Yeah.
1: Hockeys, jo Canadian manufacturers jo produce karte hai, ek choti si cheez hai, ice hockey, lakdi ki banti hai.
0: Yeah.
1: To jab iske upar tariff laga, to not only it was emotional thing from Canadians, just on lighter note, but even US citizens, they're conducting like big tournaments, they're running big clubs, and hockey players jo just professional hai, unke liye bhi ye ek shock tha. Because they were able to find only good quality wood in manufacturing of hockey was produced and made in Canada.
0: Yeah, definitely.
1: Just like football. Hai.
0: Yeah.
1: Okay. Pakistan is doing good, but dusre countries ke nisbat agar bura bhi hai,
0: to
1: I think abhi kitni dafa ho gaya hai consecutively ke har FIFA ke event mein footballs are produced and manufactured in Pakistan. तो इस वजह से हर कंट्री की कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं अभी हम एक क्विकली म्यूजिकल ट्रैक प्ले करेंगे शो में और हम वापस आएंगे अपने वी स्टिल हैव लाइक अबाउट 40 मिनट्स सो वी आर गोना टॉक अबाउट व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान व्हाटएवर इज गोइंग ऑन अबाउट इन द न्यूज़ रिगार्डिंग द इमरान खान हेल्थ एंड व्हाट वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एंड व्हेदर वाज